FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948, अश्विन माह, नौवीं तिथि तदनुसार 1 अक्टूबर सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक

0: 100 Landmarks Judgment Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेस डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। किसी बड़े संत ने अपने हाइकू छंद में लिखा है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। एक गुरु और शिष्य दोनों साथ में नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं और एक परिवार बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ रहा है। शिष्य गुरु से पूछता है, गुरु क्रोध में लोग चिल्लाते क्यों हैं? तो गुरु उत्तर देते हैं, जब दो लोग नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। इस अवस्था में वह चिल्लाए बिना सुन नहीं सकते और जितना अधिक क्रोधित होते हैं उतना दूर होते जाते हैं। तो शिष्य ने कहा, जब प्रेम करते हैं तब? उन्होंने कहा, तब और भी अधिक एक दूसरे को चाहने लगते हैं और करीब आते जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, बिना कहे ही सामने वाले की बात समझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वंदनवार में। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन।

ये भजन हमने सुना जिसे गाया आशा भोसले ने, मीराबाई ने लिखा और जयदेव ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार में अगला भजन, बेला सावीर के द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया, कबीर दास के बोल।

हम सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज़ और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए कबीर भजन को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार में देश के प्रति समर्पित इस गीत को मीना कपूर और साथियों की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। सुबह के 6:45 एवं शाम के 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रृंखला है शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इसका पहला भाग आज हम सुन सकेंगे। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन।

संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुषी पाठक। सुबह के 7 बजे का समय होगा भूले बिसरे गीत का। 7:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर सुनेंगे त्रिवेणी। 8:30 का समय होगा चित्रलोक का। और सुबह के 9:30 पर एवं रात्रि के 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी पर। दस बजे खुलेगा पिटारा। आज के मेहमान साहित्यकार लेखक मनोज रूपड़ा से ममता सिंह की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 बजे का समय होगा रंग तरंग का। 12 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार और 12:05 पर सजेगी यादों की महफिल।

1 बजे सुरीला सफर, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 बजे का समय होगा त्रिवेणी का। आलेख एवं स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, और 3 बजे श्रोताओं और सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। चार बजे का समय होगा हेलो फरमाइश का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर पुनः सुनेंगे तराने नए पुराने। 7 बजे का समय होगा जय माला का। 7:45 पर इंद्रधनुष, इनसे मिलिए टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत, और इसका दूसरा भाग आज हम सुन सकेंगे, प्रस्तुतिकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 8 बजे हवा महल, झलकी अंगारे, लेखक सोमनाथ नागर, निर्देशन सत्येंद्र शरत। रात 8:15 पर चित्रलोक, और 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। दस बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का 328वां भाग।

कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में भयानक विनाश लीला मचा रखी है, ये देख श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना का भार सौंपा और शारंग धनुष संभालकर शत्रु सेना का मान मर्दन करने चले। धनुष की एक टंकार मात्र से शत्रुओं के कानों के पर्दे फट पड़ने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े, जिनसे महाबली राक्षस योद्धाओं के हाथ, पैर और सिर कटने लगे। लेकिन मायावी राक्षस फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री राम के वाण आसुरी सेना का संहार करके तरकस में वापस लौट आते हैं। कुंभकर्ण ने भयानक सिंहनाद किया, विशाल पर्वत उखाड़कर वो वानर सेना पर फेंकने लगा। श्री राम के वाण उसका शरीर वेद कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। उसके भीम काय काले शरीर से बहता रक्त ऐसा दिख रहा है जैसे काजल के पर्वत से गेरुए रंग की धाराएं प्रवाहित हो रही हों। कुपित कुंभकर्ण दुगने वेग से वानर भालुओं को मारता काटता एक पर्वत लेकर श्री राम की ओर दौड़ा ही था कि उन्होंने उसकी भुजा ही काट डाली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: आपकी बातों से जहाँ ज्ञान की सरिता बहती है, वहीं हास्य और व्यंग्य का चुटीला झरना भी बहता है। शेखर सेन मध्य प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ है, के रायपुर के संगीत की संस्कार भूमि में पले बढ़े। आपने अपनी माँ डॉक्टर अनीता सेन से और पिता डॉक्टर अरुण कुमार सेन से संगीत की तालीम ली। माता पिता दोनों ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतज्ञ थे। शेखर सेन ने अपनी प्रतिभा से संगीत की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 200 से ज्यादा संगीत एल्बम के साथ उन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा को आगे बढ़ाया और फिर रंगमंच को अपनी साधना का माध्यम बनाया। उनकी अनूठी पहचान है उनकी एकल नाटक प्रस्तुति, सूर कबीर तुलसी विवेकानंद और भी अनेक प्रस्तुतियां, जहां वे स्वयं अनेक चरित्र और भावों को खास अंदाज में जीवंत कर देते हैं। शेखर सेन ने मीराबाई से लेकर महादेवी वर्मा तक, रसखान, रहीम, बिहारी, सूर, कबीर, तुलसी और भी अनेक कवियों और संतों की रचनाओं को उन्होंने स्वर दिया है। शेखर सेन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और अन्य अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। शेखर सेन जी संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी उन्होंने 4 वर्षों तक काम किया। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला को सुरीली कड़ियों में पिरोने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं गायक, संगीतकार, गीतकार और अभिनेता पद्मश्री शेखर सेन। शेखर दादा, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपको भी और संगीत सरिता के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
0: और अब हमने तबले पर संगत करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है आशीष विश्वास जी को। श्रोताओं से आपका हम परिचय करा दें। आशीष जी देश विदेश के अनेक संगीतमय कार्यक्रम में अपने तबला संगति से लोगों को लुभाया है, सम्मोहित किया है और आशीष जी ने श्री अभिजीत बैनर्जी से तबले की तालीम ली है और जब इनकी उंगलियां तबले पर थिरकती हैं तो हम सब सम्मोहित होकर देखते रहते हैं कि ये बिल्कुल नदी की धारा की तरह बहती है। तो आशीष जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप सभी को आशीष विश्वास का नमस्कार।
1: जब इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की तो हमने सोचा कि क्यों ना एक शताब्दी का पूरा भक्ति संगीत की यात्रा हमारे साथ साथ हमारे श्रोता भी करें और बहुत सारी चीज़ें जो कहीं पर इतिहास के खानों में छुप के रह गई हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और एक बार फिर से हम उन सभी अपनी अद्भुत रचनाओं को याद करें और उससे और समृद्ध हों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 1922
0: जी,
1: महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जो अब बहुत बड़ा हो गया है, नाशिक। वहाँ पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने एक आश्रम की शुरुआत की, स्थापना की, राम नाम आधार आश्रम
0: जी।
1: और मन में उन्होंने संकल्प लिया उस छोटे से कमरे में कि मैं केवल भगवान राम पर आधारित भजनों की रचना करूंगा
0: जी।
1: उनको कोई भगवत प्रेरणा हुई थी, बड़े संत हृदय व्यक्ति थे और वहाँ पर उन्होंने उस छोटे से आश्रम में बैठकर बहुत सारी रचनाएं बनाई। मैं आपको कुछ नाम ले रहा हूँ तो आपको एक अनुमान होगा कि क्या क्या अद्भुत रचनाएं नाशिक के उस छोटे से कमरे में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा रची गई।
0: और पंडित जी को हम सब ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा,
1: बिल्कुल
0: संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्हीं से लिए हम सभी श्रोताओं।
1: बिल्कुल। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चलो मन गंगा जमुना तीर
0: जी,
1: मत जा जोगी
0: क्या बात,
1: जानकी नाथ सहाय करें तब, या जो सबसे प्रसिद्ध धुन है

0: जो बाद में गांधी जी ने भी जिसको गाया, रघुपति राघव राजा राम,
1: क्या बात है।
0: इन सब रचनाओं की उन्होंने न केवल उनको स्वरबद्ध किया रागों का आधार लेकर, उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया। और उस कालखंड में जिस समय माइक नहीं हुआ करता था,
1: जी
0: उस
1: जी
0: समय उन्होंने 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार लोगों के सामने, कितनी बड़ी आवाज़ उनकी रही होगी कि
1: बिल्कुल
0: उनके सामने वो गाते थे और लोग उनके साथ गाते थे। और ये उनकी संगीत रचनाओं का जादू है कि आज इतने वर्षों के बाद, 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रचनाएं हमारे डीएनए का अंग बन चुकी हैं।
1: जी बिल्कुल
0: पहली रचना मैं चाहूंगा कि हम लोग आप विविध भारती के माध्यम से सुनाएं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत
1: बाजत
0: पैजनिया।
1: पैजनिया, क्या बात है
0: मैं केवल थोड़ा सा हमारे
1: जी।
0: श्रोताओं की सुविधा के लिए राग का परिचय दे रहा हूं। राग मिश्र गारा में ये रचना है।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं।
0: पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में ये रचना सुनते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: शेखर दादा, अब बताइए कि जो अभी रचना हमने सुनवाई, इस रचना के बाद अभी हम क्या सुनवाएं?
1: अगली रचना को हम सुने उसके पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी संगीत को प्यार करने वाले श्रोता हैं और जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं
0: जी,
1: उनकी जानकारी में भी ये बात आए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की
0: जी,
1: और आपको आश्चर्य होगा कि लाहौर में की 1901 में
0: जी,
1: और फिर उसका मुख्य केंद्र बना मुंबई में ऑपेरा हाउस में
0: जी,
1: और 1908 में मुंबई के गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई और इसलिए हम सब मुंबई वासी जो हैं वो ऑपेरा हाउस का जो चौक है उसको पलुस्कर चौक इस नाम से हम जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पंडित जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं पर ये जो रचना मैं चाहता हूँ वो हमारे अंतर मन में इतनी घुली हुई हैं कि मैं जानता हूँ कि जिस समय ये रचना आप सुनेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं तो मैं चाहता हूँ कि वो श्रोता भी साथ साथ इसके गुनगुनाने लगें और ये राग मिश्र पहाड़ी में है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
0: जी।
1: ये रचना आप सुने डीवी पलुस्कर जी के मधुर स्वरों में।

0: शेखर दादा, हम राम रतन धन पा रहे हैं, साथ में हम ज्ञान के रत्न, ज्ञान के मोती भी पाएंगे आपसे बहुत सारे, ये उम्मीद है। हम जरा अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किसी स्वरलिपि की पद्धति की शुरुआत की?
1: हमारे यहाँ दो संगीत स्वरलिपि पद्धतियाँ बनाई गई। पहली थी जो भातखंडी जी द्वारा बहुत उसका प्रचार किया गया, वो आसान है। पलुस्कर जी ने जो संगीत लिपि बनाई वो कठिन तो है, पर वो सांगीतिक दृष्टि से बिल्कुल संगीत के व्याकरण को मानती हुई है कि कहाँ पर तीन मात्रा, कहाँ चार मात्रा, कहाँ एक मात्रा, तो उसके उन्होंने चिन्ह अलग बनाए। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाफ नोटेशन था उससे भी वो प्रेरित थे कि एक ये ऐसा चिन्ह होगा तो चार मात्रा का होगा, ऐसा चिन्ह होगा तो आठ मात्रे का हो, जो स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न नोटेशन में हम लोग करते हैं। तो पलुस्कर जी का जो नोटेशन है वो बहुत ही वैज्ञानिक है
0: जी जी,
1: पर भातखंडे जी का जो नोटेशन है वो बहुत सरल होने के कारण उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हमारे लिए दोनों ही स्वरलिपियाँ अच्छी हैं। ये वैसा ही है जैसे माँ अच्छी है या पिताजी अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, जिसको जिसमें सुविधा हो
0: जी।
1: पर प्रचारित जो ज़्यादा है वो भातखंडी जी वाली स्वरलिपि है।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी थी और विद्यार्थियों का जिक्र आपने किया था, तो हमें लगता है कि संगीत सरिता कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक पाठशाला की तरह है। शेखर दादा, अब संगीत सरिता कार्यक्रम की इस कड़ी के लिए हम बातों को अपने समेट रहे हैं और कल के संगीत सरिता में कुछ नई बंदिशें लेकर आएंगे, कुछ नई भक्ति रचनाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए शुभारंभ करते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का इस गीत के साथ, जिसे लिया गया है फिल्म परछन से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, नूर लखनवी ने इसे लिखा है और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में माशुका फिल्म से सुरैया की आवाज़ में यह गीत।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

हम सुन रहे थे आन फिल्म से यह गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोलों के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का अगला गीत, जो कि है फिल्म तुलसीदास से आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं GS नेपाली, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत।

अभी ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन।

हम सुन रहे थे सुबह का तारा फिल्म से यह गीत उषा मंगेशकर की आवाज में, नूर लखनवी के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अगला गीत शबाब फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार है शकील बदायनी और संगीतकार है नौशाद।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टेल।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में

0: हम सुन रहे थे ये गीत यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इंदिवर ने जिसे लिखा, उषा खन्ना ने जिसे संगीतबद्ध किया और हमने लिया फिल्म साजन बिना सुहागन से।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी

0: कलाकार तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

हम सुन रहे थे ये गीत लहू के दो रंग फिल्म से। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित ने इसे गाया, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के में अगला गीत, जो कि है जानी दुश्मन फिल्म से। किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, वर्मा मलिक के हैं बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं अगला गीत घर फिल्म से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इस गीत को बोल दिए हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
4: पेंटर बाबू
3: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
5: दिल तो पागल है,
3: दुश्मन
6: चिट्ठी न कोई संदेह,
3: गदर एक प्रेम कथा,
7: मैं निकला ओ गट लेके,
3: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
8: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
3: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

देवता फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गुलजार के बोल, आरडी वर्मन के संगीत के साथ। इसी के साथ हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस सबसे कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी

0: भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DED के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत PMJ,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह

0: के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
3: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं

0: श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। अगला प्रोग्राम कुछ ही पलों में।
5: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग हैं। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बनाना है।

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं, मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन,
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
5: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
6: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
5: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

हम सुन रहे थे ये गीत वंदे भारतम, वंदे भारतम एल्बम से विशाल मिश्रा की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा और आरकू ने इसे संगीतबद्ध किया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज कुछ विशेष दिन है, जिनमें से एक विशेष दिन हो जाता है इस महिला को याद करने के साथ जिनका नाम है डॉक्टर एनी बेसेंट। आज इनका जन्मदिवस है जिसे हम जन्म जयंती के रूप में मना रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को हम इसे मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में। वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद रही हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए नींव की ईंट बन गए। आइए सुनते हैं एनी बेसेंट को याद करके ये गीत।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और आइए हम बात कर रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम में डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने होम रूल आंदोलन 1916 में, जिसे आरंभ किया था श्री बाल गंगाधर तिलक ने, उनके साथ मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना करवाई, जिससे भारतीयों ने स्वशासन की मांग राष्ट्रीय स्तर पर गति दे सके। इसके साथ ही वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी सन 1917 में चुनी गईं। इसके साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं, जैसे 1898 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। वो कॉलेज कौन सा था, क्या बात थी, इसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से विराम के बाद।
4: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।
8: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
9: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
8: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
9: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
8: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।

डॉक्टर एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत योगदान दिया और उसके साथ ही शिक्षा के कार्यक्रम में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए हम याद करते हैं। और कहीं पढ़ा था कि लहजे को ज़रा देख, जवां है कि नहीं, बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ बालों की सफ़ेदी आ जाए तो बुढ़ापा नहीं होता। कई लोग अपने जीवन में एक लंबे अरसे तक कार्य करते रहते हैं। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस और हम सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज का दिवस उनके लिए मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य, भलाई और समाज में उनके अमूल्य योगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1990 में इस दिन की घोषणा की और यह दिन लगातार मनाया जाने लगा। हालांकि बात सच है, जो बुज़ुर्ग हैं वह बुज़ुर्ग नहीं हैं, वह बहुत सारी संभावनाओं और बहुत सारे एक्सपीरियंस का भंडार है। तो चलिए उनसे हम शिक्षा लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

You better run, run, run, run, run. You better run, run, run, run. जितने मैंने दिल हैं तोड़े, उतने भी हैं सर भी फोड़े, लाखों को है पीछे छोड़े।

0: हम सुन रहे थे बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म से यह गीत अमिताभ बच्चन की आवाज़ पे। विशाल ने इसे लिखा और विशाल शेखर ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
6: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
5: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
6: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
5: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
7: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। अरे होते हैं जिनके सफेद बाल, वो वक्त की पहचान होती है। होता है जो उनका अनुभव, उसको सफ़ेद बाल उनकी निशानी होती है। बिल्कुल सही बात कही है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 में इस दिवस का एक मुख्य विषय रखा गया है। विषय है द एज ऑफ लॉन्गेविटी, रीथिंकिंग सिस्टम फॉर लॉन्गर लाइफ। इसका अर्थ है कि दीर्घायु का युग, लंबी आयु के लिए व्यवस्थाओं का पुनर्विचार। इस विषय का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन प्रत्याशा में बहुत सुधार हो रहा है तो लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं। इस थीम पर जोर दिया जाता है कि आप स्वास्थ्य सेवा दें, सामाजिक सुरक्षा दें, आवास दें, कार्य प्रणाली इतने सुंदरता से तैयार करें कि किसी व्यक्ति को आयु वर्षों की गिनती में ना रहे बल्कि स्वस्थ जीवन, सक्रिय और गरिमापूर्ण रहे। और हमारे जो समाज में बुजुर्ग हैं उनका

मान सम्मान करने का कर्तव्य हमारा बनता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर श्रम किया है और उस श्रम से निकला है अनुभव, और वो अनुभव बनता है हमारे लिए मार्गदर्शन। इसलिए हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल करनी चाहिए, वह वित्तीय आत्मनिर्भर हो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग हमारे समाज की मजबूत नींव है, मार्गदर्शक है। उन्हें हमें केवल सुविधाएं नहीं देना है, बल्कि सच्चा अपनत्व, सम्मान और समय, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वह भी देना है। ढेर सारा प्यार हमें पहुंचाना है उन तक। आइए सुनते हैं हमारे सभी बुजुर्गों के लिए ये गीत।

हम सुन रहे थे 102 नॉट आउट फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में यह गीत, जिसे लिखा हिरल ने और सलीम सुलेमान ने इसे संगीतबद्ध किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन एक बार और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज है श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि। अब ये वीर चंद्र गढ़वाली जी कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जिसने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म लिया और अपने निर्भीक और स्वाभिमान स्वभाव के कारण इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना बड़ा सारा योगदान दिया। अब इनका जो पहली जो भर्ती हुई वह ब्रिटिश सेना के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हुई। यहाँ पर उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गढ़वाली यह नाम इतिहास के पन्नों में

इस तरह से अमर हो गया क्योंकि इस नाम ने पेशावर कांड के नाम से इस नाम को जाना जाने लगा, यानी 23 अप्रैल 1930 की उस तारीख के साथ नाम है पेशावर कांड। पेशावर का वह किस्सा अख्वानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के साथ निहत्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश कैप्टन के रिकेट ने गढ़वाल राइफल्स को निहत्ते सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का एक आदेश दे दिया। उस समय हवलदार मेजर चंद सिंह गढ़वाली अपनी जान और भविष्य की परवाह किए बिना बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने चिल्लाया और हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। सैनिकों ने उनकी बात मानी और बंदूकों की नाल को नीचे कर लिया। ऐतिहासिक इनकार के बाद ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने हिला दिया। इसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल चला, उम्र कैद की सजा हुई, 14 वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बाद में महात्मा गांधी ने उनकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का स्वतंत्र हो गया होता। 1 अक्टूबर 1979 को राष्ट्र का यह महान सपूत चिरनिद्रा में लीन हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली केवल एक फौजी नहीं बल्कि विवेक और राष्ट्र प्रेम के वो प्रतीक थे जिन्होंने सिखाया कि देशभक्ति के प्रति निष्ठा किसी औपनिवेशिक हुक्म से बड़ी होती है। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सादर नमन करता है।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: हम सुन रहे थे दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज़ में, जिस गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, ए आर रहमान ने जिसे संगीतबद्ध किया, हमने जिस फिल्म में इसे लिया गया है वह फिल्म है रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं ये एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। अब चित्रलोक में वक्त है कि एक कहानी छोटी सी आपके साथ साझा की जाए। कि एक समय की बात है, बहुत धनी और जिज्ञासु राजा थे, तो उनकी एक आदत थी कि वो परीक्षाएं लिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और वह वहीं एक दूसरे पत्थर के पीछे छिप गए अपने मंत्रियों के साथ में, ये देखने के लिए कि उस विशाल पत्थर के आसपास से गुजरने वाले, निकलने वाले लोग क्या करते हैं। अब वहाँ से कई लोग निकले, तो सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी और दरबारी निकले। उन्होंने पत्थर को तो हटाया नहीं और अगल बगल से निकल गए। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ से निकले कुछ ऐसे लोग जो सामान्य थे, तो उन्होंने बड़ी गुस्सा किया, बड़ा गंदा गंदा बोला। उन्होंने कहा, बड़ा ख़राब राजा है, इतना बड़ा पत्थर रखा है।

0: नहीं हटवा सकता। क्या काम का राजा है, क्या काम के दरबारी हैं, बस हमसे तो कर लिया जाता है, हम कर दिए रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। राजा ने इस बात को भी सुना और उसके बाद में पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। अब थोड़ी देर के बाद में एक किसान वहां से निकलता है। उस किसान के हाथों में बहुत सारी सब्जियां हैं जिसे वह बाजार लेकर जा रहा है बेचने के लिए, लेकिन वह देखता है बीच में एक बड़ा पत्थर है। वह उस पत्थर को हटाने के लिए अपने हाथ की सब्जियां पहले नीचे रखता है और उसके बाद उस पत्थर को हटाने लगता है। पत्थर हटाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बड़ा पत्थर है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन उस पत्थर को धीरे धीरे करके वह लुढ़काकर सड़क के उस ओर रख देता है। और जैसे ही वह पत्थर हटाता है, उस पत्थर के नीचे उसे एक थैला मिलता है और उस थैले को खोलते ही वह पाता है कि उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के रखे हुए हैं और वह खुश हो जाता है। तभी उसे एक चिट्ठी भी मिलती है और उस चिट्ठी को जैसे ही वह पढ़ता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वह चिट्ठी सामान्य चिट्ठी या सामान्य पत्र नहीं था, राजा के द्वारा दिया गया पत्र था और उसमें यह लिखा था कि आपने इस सम्मान को चुना है क्योंकि आपने देश की बाधाओं को हटाने का प्रयास किया है, तो राष्ट्र देश आपके लिए सम्मान रखता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पत्थर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे शहर में, कभी कभी हमारे देश में मिलते हैं और हम उन्हें हटाने की बजाय उनसे ही लड़ बैठते हैं। विचार कीजिएगा, हमने कितने पत्थर हटाए, इस बात का विचार करना है ताकि राष्ट्र सुरक्षित हो सके। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: लेते एक छोटा सा विराम।
4: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में हमने सुनाई आपको एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी कोई छोटा बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में आए तो उसे हम खुद हटा लेंगे, ना कि हम दूसरों को उस बात के लिए कोसेंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत भाग मिल्खा भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने इसे गाया। प्रसून जोशी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। हम आज का दिवस यानी 1 अक्टूबर का दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, वह है मिलिट्री नर्सिंग दिवस। और आज हुई थी मिलिट्री नर्सिंग की स्थापना। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1926 को भारतीय सेना के तहत एक स्थायी नर्सिंग सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया गया था। यह इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर 1926 से आरंभ हुई। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए अपना कार्य करना। महत्व की बात यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और पूर्णतः महिला अधिकारी कोर में से एक संस्था यह है, जो युद्ध में और शांति में दोनों समय सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो हमारी ओर से मिलिट्री नर्सिंग दिवस पर, मिलिट्री नर्सिंग दिवस में काम करने वाली प्रत्येक महिला को, अब तो पुरुष भी उसमें होंगे, उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद सेवाओं के लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से ए आर रहमान सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में समीर के बोल और ए आर रहमान के संगीत के साथ। हम लोग कई बार कई लोगों को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान, इसका व्यवहार ऐसा ही होगा और इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा। अब एक छोटी सी घटना घटी कि एक बालक का आइसक्रीम लेने के लिए गया और वहाँ पर पहुँचा तो उसने पूछा कि सबसे सस्ती आइसक्रीम कौन सी है, तो उसने कहा 50 रुपये वाली। अब ये जो महिला थी वो उसको आइसक्रीम देने के लिए खड़ी हुई, तो उसने कहा कुछ और है जो इससे सस्ता है, तो उसने कहा हाँ एक 35 रुपये वाली है। इस बार उसका रवैया थोड़ा कड़क था और उसने उस कड़कता के साथ उस बालक को कहा हाँ 35 रुपये की है, चाहिए है तो लो नहीं तो जाओ यहाँ से। उस बालक ने चुपचाप उस आइसक्रीम को ले लिया। आइसक्रीम ले रहा है, खा रहा है, वो महिला उसे देख रही है और बार बार थोड़ा चिढ़ भी रही है, लेकिन उस चिढ़न के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। कारण, जब वह बालक उस महिला को उस आइसक्रीम का पैसा देने आता है तो वह उसे 50 रुपये ही देता है, कहता है 35 रुपये आइसक्रीम के और 15 रुपये हमारी तरफ से आपके लिए। वह महिला निशब्द हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी को किसी की बात किसी को लेकर निर्णयात्मक रूप से ना पहुंचे, पहले समझें, जानें, विचारें। आज के चित्रलोक में बस इतना ही, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे दम लगा के हईशा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक के संगीत के साथ यह गीत आज्ञा दीजिए कार्यक्रम चित्रलोक से। नमस्कार।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हो चुके हैं। हमारा अगला प्रोग्राम आज का अखबार।
5: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
6: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
7: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
6: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
7: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
8: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: आज का अखबार।
4: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ हैं। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। अखबारों में आज की खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करेंगे। और इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंच। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा सैल्यूट भारतीय पायलट को। आज की अखबारों में भी सुर्खियों में ये खबर है, तस्वीरों के साथ है, सैल्यूट है भारतीय पायलट सीमत मच्छार को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से हिम्मत से एक ऐसी घटना को टाल दिया जिसके बारे में महसूस करते ही सिरहन सी दौड़ जाती है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान के कॉकपिट में को पायलट अपने नापाक इरादों के चलते अपने पायलट पर जानलेवा हमला करता है, फिर बात नहीं बनती तो चाकू से हमला करता है। और चाकू से हमला होते ही जो पायलट है समित मच्छार, वो लहूलुहान हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीय पायलट अपना हौसला नहीं हारता, मुकाबला करता है। इसी बीच यात्रियों में दो ऑफ ड्यूटी बैठे पायलट्स यात्रियों के साथ मिलकर कॉकपिट का दरवाजा तोड़ते हैं

और अंदर देखते हैं कि पायलट जो है वो बुरी तरह से घायल है, लहूलुहान है, चारों ओर जो है खून बिखरा हुआ है। हमलावार पर ये सभी यात्री जो दो ऑफ ड्यूटी पायलट्स हैं उनके साथ मिलकर जो है काबू पा लेते हैं और इस तरह से 174 यात्रियों के जो है प्लेन का क्रैश होना जो है वो बचा लिया जाता है। तो पायलट की सूझबूझ और हिम्मत के चलते हुए इसमें 150 इजरायली नागरिक और 27 बच्चे भी शामिल थे। यह हमलावर को पायलट ओमान का था। अखबार लिखती है ये आतंकी वारदात थी। इजरायली अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि 9/11 जैसी ये साजिश रचने की कोशिश की गई जिसे टाल दिया भारतीय पायलट ने। और दोस्तों देखने की बात है कि विमान एक मिनट में झटके से 17,400 फीट नीचे आ गया। इसके बाद विमान से हाईजैक का अलर्ट भेजा गया। अलर्ट मिलते ही इसराइल ने तुरंत फाइटर जेट्स रवाना किए। उनके निगरानी में फ्लाइट का रास्ता बदल जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में दाखिल करवाया गया और सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई। 30,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश को नाकाम किया हमारे भारतीय पायलट ने, समित मच्छार ने। भारतीय पायलट ने इस हिम्मत को जो अंजाम दिया है उसको हम दाद देते हैं। पूरी दुनिया इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। विपत्ति में भी बिना विचलित हुए, घायल होते हुए भी ओमान के को पायलट के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया समित ने। और यहां तो हमें यह भी याद आ रहा है कि आतंकवाद के प्रति भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसको समित मच्छार ने बरकरार रखा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पायलट की समित मच्छार की बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बच गई। तो आज इस प्रोग्राम में पहला सलाम था हमारा भारतीय पायलट समित मच्छार को। वैसे इसके बारे में हम बताएं, ये बहुत ही अनुभवी व्यावसायिक पायलट हैं और मुंबई के रहने वाले हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में इस समय आप अखबारों से ली गई जानकारी सुन रहे हैं और साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स हैं। ये कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कसौली ट्रांसमीटर से ये प्रोग्राम आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हमारी ऐप प्रसार भारती की ऐप जो है न्यूज़ ऑन AIR और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब एशियाई खेलों की बात करते हैं। एशियाई खेलों में कल देश का सबसे सफल दिन रहा और पदक संख्या पहुंची है 60। एशियाई खेलों में हमारे अभियान को आखिरकार रफ्तार मिली जब कंपाउंड तीरंदाजी के सभी टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। क्रैप निशानेबाजी की जोड़ी नीरू ढांडा और काइनन चेनाई ने मिश्रित स्पर्धा का स्वर्ण अपने नाम किया और महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई। मौजूदा एशियाई खेलों में यह भारत का अब तक का सबसे सफल दिन बन गया। मुक्केबाजी रिंग से प्रिया 60 किलोग्राम और कपिल 90 किलोग्राम के दो कांस्य पदकों और कुश्ती के मैट से सुनील कुमार 87 किलोग्राम के एक कांस्य ने कुल पदक संख्या 60 कर दी, जिसमें 10 हमारे सोने के मेडल हैं, 21 रजत हैं और 29 कांस्य हैं, जिसमें मंगलवार के 10वें स्थान से भारत की स्थिति जो सुधर कर 8वें स्थान पर पहुंच गई है। कल का दिन पूरी तरह से कंपाउंड तीरंदाजी के नाम रहा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे जिन्होंने पुरुष, महिला और मिश्रित टीम के अपने खिताबों का बचाव कर लिया। ज्योति सुरेखा की बात करें, वैनम और चिकिता तानी परथी और पृथिका प्रदीप की महिला तिकड़ी ने स्वर्णिम अभियान की शुरुआत की, जिसका समापन कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुष टीम का पीला तमगा जीत कर किया। इसके बीच चिकिता और साहिल ने मिश्रित स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही देश के लिए ओलंपिक कोटा स्थान भी सुरक्षित कर लिया है। इस तरह भारत 2028 ओलंपिक्स में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों, जो लॉस एंजलिस खेलों में इस स्पर्धा की शुरुआत का गवाह बनेगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की अखबारों में जो फोटो है कंपाउंड महिला टीम तीरंदाजी की, इवेंट के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाली पृथिका प्रदीप, चिकिता तानी पार्थी और ज्योति सुरेखा वैनम, इन तीनों की तस्वीर जो है अपने अपने पदकों के साथ छाई हुई है। और एक बात आपसे शेयर करेंगे कि दोहरा

स्वर्ण जीतकर गोल्डन गर्ल बनी चिकिता तीनी पार्थी अब अपने पिता को उपहार में धान काटने की मशीन भेंट करेंगी। दरअसल चिकिता की इस कामयाबी में उनके किसान पिता श्रीनिवास का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तेलंगाना के सुल्तानपुर गांव के श्रीनिवास ने बेटी के सपने पूरे करने के लिए अपनी पूरी खेती दांव पर लगा दी थी। उन्होंने कर्ज लेकर खरीदी धान काटने की मशीन को भी बेच दिया था। जापान जाने से पहले चिकिता ने पदक जीतने पर पिता को उस उपहार में वापस लौट आने का संकल्प जताया था। और निशानेबाजी में नीरू चेन्नई ने दिलाया स्वर्ण और सुनील ने रचा इतिहास, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो एशियाई खेलों में कल का दिन हमारे लिए बड़ा सफलता लिए हुए दिन रहा, इसके लिए हमारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई है। और महिला हॉकी की बात करें तो महिला हॉकी टीम 44 साल बाद गोल्ड मेडल से एक कदम दूर है। महिला हॉकी टीम अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए कोरिया पर 2-0 की जीत के साथ फाइनल में प्रवेश कर गई है, जहां उसका सामना मौजूदा चैंपियन चीन से होगा। पिछले महीने नीदरलैंड्स और बेल्जियम में विश्व कप में ऐतिहासिक 5वें स्थान पर ही भारतीय टीम एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने से एक जीत दूर है। तो हमारी शुभकामनाएं हमारी हॉकी टीम के साथ सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: आज का अखबार कार्यक्रम जारी है। फिलहाल बारी है छोटे से अंतराल की और रुकते हैं, जानते हैं प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian।

0: और शर्तें लागू।
1: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: आज का अखबार कार्यक्रम में हम फिर आपके साथ हैं और अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। पहले पंजाब की बात करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जालंधर में एक रैली में कहा कि भाजपा आई तो दिसंबर 2029 तक नशा मुक्त होगा पंजाब। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने बढ़ाया ड्रग्स का कारोबार, करेंगे जड़ से खत्म। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने दिया त्यागपत्र, चल रही थी खींचतान। धान की सरकारी खरीद आज से पंजाब में, 1887 मंडियां तैयार हैं, आवक धान की शुरू हो चुकी है। अमृतसर जिला शहरी पुलिस की कार्रवाई, 13 पिस्तौल, 4 किलो हेरोइन समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और पंजाब में पराली जलाने के 52 मामले दर्ज किए गए हैं, अमृतसर जिले में सबसे ज्यादा जली पराली। पंजाब के बाद अब हरियाणा की बात की जाए। राइस मिलर्स की फिक्स्ड डिपॉजिट गारंटी सुरक्षा राशि 50 लाख से घटाकर 15 लाख करने का आश्वासन। मंडियों में 1.84 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा। हरियाणा में कमजोर मानसून के चलते 6 साल में सितंबर सबसे सूखा, 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर का दायरा बढ़ेगा, ईमानदार करदाताओं पर बोझ नहीं होगा। कर राजस्व 2030 तक 10 और 2047 तक 15% करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार का। ₹39.89 लाख परिवारों को PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिलता रहेगा सरसों का तेल। और हिसार में आज से कृषि मेले में 45% प्रगतिशील किसान सम्मानित किए जाएंगे। पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल के ऊना जिले के 201 स्कूलों में होंगे आपदा प्रबंधन को लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। और नालागढ़ में कुछ उद्योगों से हो रहे प्रदूषण को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करके जताया रोष। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। हेडलाइंस के बाद यहाँ एक छोटा सा अंतराल।
0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: मोहाली में 10% रिबेट खत्म होने से पहले लोगों ने कराई प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट। एक दिन में 5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स हो गया जमा। खरड़ का 40 साल पुराना सपना हुआ साकार। महाराजा अज सरोवर के कायाकल्प के लिए 93.94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ऐतिहासिक सरोवर बनेगा धार्मिक पर्यटन केंद्र। चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया आज करेंगे समीक्षा। अवैध ड्रग मनी प्रॉपर्टी पर बड़े फैसले संभव। पुलिस का दावा, 20 दिनों में 90% ड्रग फ्री हुआ चंडीगढ़ शहर। और लाडलू मंडी में धान की आवक बढ़ी, गेहूं की बोरियों से जगह हुई कम। अब यहां रुकेंगे, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बारी तो गाने की है, लेकिन गाने से पहले एक जानकारी आपको देंगे, उसके बाद आपके लिए प्ले करेंगे गाना। फिलहाल अंतराल।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों। अब आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है उस्ताद योजना। उस्ताद यानी अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और पारंपरिक कला से संबंध रखने वाले कलाकारों के उत्थान के लिए ये योजना शुरू की है, ताकि इन कलाकारों को आज की आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए और इनकी कला में निखार आ सके। दरअसल देश में बुनकर और हस्तशिल्पकार वही पुराने तरीके से काम करते आ रहे हैं, आज की आधुनिक तकनीक से ये जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन इस योजना का लाभ उठाकर ऐसे तमाम कलाकार अपने अपने काम में उस्ताद बन सकते हैं, मास्टर्स बन सकते हैं। उस्ताद योजना में 45 वर्ष की आयु तक आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कुशलता जो 3 से 8 महीने तक सिखाई जाती है, इसके लिए सरकार हर महीने 3,000 रुपये का स्टाइफंड देती है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। मास्टर ट्रेनर की फीस जो है 50,000 रुपये महीना है। इसके लिए आप और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कर सकते हैं www.minorityaffairs.gov.in। तो ये तो थी उस्ताद योजना, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम है उस्ताद योजना। और इस योजना के बाद ये गाना।

और अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां। आज के स्थानीय समाचार बदलूंगी। नया नियम आज से लागू है, बिना ई के वाई ई सी वाले ऑनलाइन या एजेंसी से घरेलू सिलेंडर बुक नहीं करा सकेंगे। बिना ई के वाई सी वाले ऑनलाइन या एजेंसी से घरेलू सिलेंडर बुक नहीं करा सकेंगे, नया नियम है। ई के वाई सी करवा लें या कमर्शियल दरों पर 5 और 10 किलो का सिलेंडर ले लें। भारत और वेस्टइंडीज वनडे क्रिकेट मैच के बारे में बात करें, ट्रैफिक पार्किंग एडवाइजरी जारी की गई है, 400 जवान तैनात किए गए हैं और ये मैच मुलापुर में होना है। मुलापुर में रोहित विराट को वनडे में साथ दिखने का ये अंतिम मौका है।

0: और दोस्तों, आज है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। हर रक्तदाता भारत को सभी मरीजों के लिए सुरक्षित रक्त आपूर्ति के लक्ष्य के करीब लाता है। तो रक्तदान के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, रक्तदान जरूर करें। और आज हमारे वरिष्ठ नागरिकों का दिन है भाई, और इस मौके पर अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों की अच्छी सेहत की हम कामना करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और हाँ अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी समाचारों के लिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
6: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल है, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
7: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है

0: MSP.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश M.M. सुंदरेश और P.B. वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। दुबई से इसराइल के तेल अविव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। और आज दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है, हमारे बुजुर्गों का दिन है, वरिष्ठ नागरिकों का दिन है, और ऐसा कोई दिन नहीं है हमारी दिनचर्या में जो उनके बिना ना हो। वो हर दिन हर पल हमारे साथ रहते हैं, और अगर वो

हमारे साथ नहीं भी होते तो उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा छाया रहता है, तारी रहता है। तो आज इस मौके पर हम सभी वरिष्ठ नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनके जीवन में खुशी के पल कायम रहें, बरकरार रहें, यही हमारी दुआएं हैं। और जाने माने गीतकार, शायर, फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक गुलजार साहब का कहना है, हर किसी के लिए, वो भी 92 साल की उम्र के हुए हैं, कि जिंदगी हर लम्हा छूती है, एहसास के सेंसर खुले रखिए। उनका कहना है कि आसमान ऐसे खुलता है जैसे कपड़े का कोई थान खुल रहा हो, सूरज को उगते देखने जैसा सुख कुछ और नहीं है, उगते सूरज को देखने से खूबसूरत कुछ और नहीं है। आज इस मौके पर हम सभी वृद्धजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हैं, उनके साथ उनके परिवार की सुख शांति खुशियां शामिल हैं।

0: ये गाना हमने विशेष रूप से आज ये प्ले किया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर अपने बुजुर्गों के लिए, अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये गाना गाया हरिहरन और साथियों ने। ये फिल्म थी हम साथ साथ हैं। गीत को लिखा था रविंद्र रावल ने, संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: सफर सुरीला में अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। ऐश किंग की आवाज में ये गाना है।

अभी आपने एश किंग की आवाज़ में ये नॉन फिल्मी गाना सुना, सुरीला सफ़र, सफ़र सुरीला सा। जी, ये हमारा प्रोग्राम है, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं, गीतों का ये कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम जारी है, अब बारी है फिल्मी गाने की। ये गाना है भरत व्यास का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में ये गाना है, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में ये गीत है, सती सावित्री ये फिल्म है।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। सती सावित्री ये फिल्म थी, कलाकार थे लता मंगेशकर और मन्ना डे। अब ये गैर फिल्मी गीत है सांझ वी की आवाज में।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। ये फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जतिन ललित के संगीत में ये गाना आपने सुना। सफर सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ पर, FM 107.2 MHz पर। यह कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं। रेडियो सेट पर हमारे कसौली ट्रांसमीटर से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर यह कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। अब बारी है इस प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजल की, और फनकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आपने जगजीत सिंह को सुना और अब बारी है फिल्मी गाने की। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना है, गुलशन बावरा के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है और ये फिल्म है राही बदल गए।

0: राही बदल गए, अभी आपने इस फिल्म से किशोर कुमार को सुना। गुलशन बाबरा ने गीत को लिखा, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब यहाँ छोटा सा अंतराल।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: नॉन फिल्मी गाना है आशीष कौर का गाया हुआ।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

यसुदास की आवाज में ये गीत है, फिल्मी गाना है, ये फिल्म है अगर। गीत को लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीतकार सोनी गोमी, इस गाने को यसुदास के साथ गाया आशा भोसले ने।

अभी आपने अबीर की आवाज़ में ये नॉन फिल्मी गीत सुना और प्रोग्राम के आखिर में चंदा और बिजली फिल्म से हम आपको एक गीत सुनवा रहे हैं। मन्ना डे की आवाज़ में गाना है, नीरज के बोल हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आपने चंदा और बिजली फिल्म से ये रचना सुनी मन्ना डे के स्वर में। इसी के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है लक्ष्य, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: Kirana Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू।
2: लक्ष्य लक्ष्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, जब कोई युवा अपने सपनों को समाज की सेवा के साथ जोड़ देता है तो उसकी वो सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती बल्कि वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ लक्ष्य कार्यक्रम में ऐसे ही एक युवा मौजूद है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, समाज सेवा को अपना मिशन बनाया और अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रचित जैन। रचित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद सर।
2: आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता और आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई?
3: मेरा जो जन्म है वो बनूड़ एक कस्बा पड़ता है, जो अगर हम जरकपुर से पटियाला की ओर जाएं तो उसी रास्ते में राजपुरा से पहले बनूड़ एक कस्बा पड़ता है, तो एक छोटा सा कस्बा है और वहां पर ही मेरी पढ़ाई हुई, जो 10th मैंने अपनी कम्प्लीट की। और उसके बाद जब मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो मैं प्लस वन के अंदर चंडीगढ़ आया, सेंट जॉन्स हाई स्कूल सेक्टर 26 चंडीगढ़। वहां से मैंने अपनी प्लस वन और प्लस टू कंप्लीट की और उसके बाद जो कॉलेज की एजुकेशन है, बैचलर्स इन कॉमर्स एंड मास्टर्स इन कॉमर्स, वो मैंने DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ से कंप्लीट करी।
2: जी, कॉमर्स करने की कुछ खास वजह?
3: खास वजह तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं रट्टा अच्छे से नहीं लगा सकता, तो वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, मुझे अंडरस्टैंडिंग उसकी ज्यादा ठीक लगती है। अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जबकि कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट्स भी कॉमर्स में आ जाते हैं, पर जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो शुरुआत से रहा है, वो प्रैक्टिकल या मैथमेटिक्स, यही मेरे सब्जेक्ट रहे हैं।
2: जी, कॉलेज में जब आप गए तो वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा, थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: कॉलेज जब स्टार्ट हुआ तो वो कोविड टाइम था, हमारी एडमिशन्स ऑनलाइन हो गई और हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन चलने लगी, जो हमारा फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर एंड होते होते कॉलेज रीओपन हो गए और हम सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आए। तो अगर हम कहें, जो हम कहते हैं कि बिल्कुल फ्रेशर या जूनियर जो एक कॉलेज में होता है, जो हम सुनते हैं कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमारी लाइफ से कट हो गया और हम डायरेक्ट सेकंड ईयर से एंट्री कॉलेज के अंदर की। उसके बाद क्योंकि जो इनेट क्वालिटीज थी पहले से ही कि मैं कुछ रिप्रेजेंट करूं, लीडरशिप क्वालिटी में लाऊं या सोशल वर्क को अपना एक माध्यम बनाऊं, तो ऐसे क्लब्स को ढूंढा या उन्होंने मुझे ढूंढा या मैं उन तक गया, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की वर्किंग रहती है कॉलेज के अंदर, उनको ढूंढा, उनके अंदर एनरोल किया। ज्यादा माध्यम ये था कि मैं पढ़ाई के अलावा अब कुछ अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको किसी स्तर पे निखार पाऊं, उनको इम्प्रूव कर पाऊं और जो मैं करना चाह रहा हूं वो मुझे फ्रीडम अब मिली है, जैसे

0: हर कोई चंडीगढ़ के अंदर आता है वो समझता है कि मैं जब अपने घर से एक जैसे पंछी कैद से छूट कर आया है कि वो जो करना चाहे उसने उड़ान भरी है तो वो करे। तो ऐसे ही जब मैं अपने घर से आया तो मैं चाहता था कि जो मैं लीडरशिप क्वालिटी अपनी चेक करना चाहता हूँ या मैं सोशल वर्क में जाना चाहता हूँ, यूथ एम्पावरमेंट में जाना चाहता हूँ, तो वो मैंने माध्यम क्लब्स के थ्रू कॉलेज ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया।
1: जिस तरह से आपने सोशल वर्क की बात की, समाज सेवा की बात की, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरह से आपने सोचा कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं?
0: समाज सेवा की जो बात है, पढ़ाई के अलावा जो मुझे पसंद है वो ज्यादा डीलिंग करना, किसी के साथ उसके अनुभव सुनना, उससे जानना। और जब समाज सेवा करते मैं मानता हूँ इसके अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जब आप किसी की ग्राउंड रियलिटी, उसकी एक्चुअल रियलिटी आप जान सकते हो। तो जब ये समाज सेवा का भाव जब कॉलेज एंटर किया उसी से आया और NSS शुरुआत की। लेकिन इससे पहले भी समाज सेवा का भाव मैंने अपने दादी जी से सीखा था जब मैं अपने घर में था बनूड़ में रहते रहते, कि वो कैसे समाज की सेवा करते और उसके बाद किसी के चेहरे पे एक खुशी आ जाए या वो दिल से शुक्रिया कर जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ कमा लिया है। अगर कोई मुझे पैसे भी देता था तो मुझे उतनी खुशी नहीं लगती थी कि मैंने कुछ कमाया है, पर अगर कोई दिल से शुक्रिया करके जा रहा है या किसी का बनता काम बना दिया गया है वो जब शुक्रिया करके जाता था तो ऐसा लगता था कि कुछ कमा लिया है। तो अब माध्यम बनाया कि सोशल वर्क शुरू करेंगे। आज ऐसा नहीं मालूम था कि वो एक पहचान बन जाएगी, वो एक प्रोफाइल ही बन जाएगी कि हम इस स्तर तक पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि आपकी दादी जी वो समाज सेवा कर रही थी और उन्हीं से प्रेरणा आपको मिली।
0: बचपन से ही जब मैंने चलना सीखा था तो मैं उनका हाथ पकड़ करके, अगर आप मानो कोई भी आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि वो मेरे को साथ लेकर ही जाएंगे और अगर मैं नहीं जाता था तो वो झगड़ा करते थे। तो जब मैं चलने लगा और नियम बन गया कि वहां जाना ही जाना है, और जब मैं खुद से चलने लगा तो मैं दौड़कर भी ऐसे स्थान पे खुद भागकर जाने लगता था क्योंकि वहां का अनुभव अलग होने लगा, खुशी मिलने लगी। इसके अलावा संत जनों की सेवा उनका एक दैनिक कार्यक्रम था, वो हर रोज करते थे। संत जनों की जो सेवा मैंने उनसे सीखी है वो आज तक वो भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ।
1: इसका मतलब ये है कि जो समाज सेवा के संस्कार हैं आपको अपनी दादी जी से मिले।
0: जी बिल्कुल।
1: आपने जैसे बताया कि आप NSS से भी जुड़े, तो NSS से आपका जो जुड़ाव है वो कैसे हुआ और इसने आपकी शख्सियत पर किस तरह का प्रभाव डाला, या यूं कह लें कि आपकी शख्सियत में किस तरह का परिवर्तन हुआ?
0: NSS जो है वो नेशनल सर्विस स्कीम है, या हिंदी में कहें राष्ट्रीय सेवा योजना, जो डायरेक्ट युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। प्लस वन प्लस टू से इसके एनरोलमेंट शुरू हो जाती है, पर उस स्तर पे इतना काम नहीं हो पाता, हम कह सकते हैं इतना ज्यादा टास्क इन्वॉल्वमेंट स्कूल में नहीं करना चाहते उनके लिए। पर जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो वो एक अलग बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। NSS अगर हम मानते सिर्फ सफाई करना उनका काम है, जो एक राष्ट्रीय सेवा योजना का वॉलंटियर है, सिर्फ सफाई नहीं है, तो हमें हर फील्ड से राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर काम करने को मिलता है। सेवा शब्द राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर आ रहा है, तो सेवा तो माध्यम है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हमें लीडरशिप ग्रोथ करनी है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर हम यूथ पार्लियामेंट्स करते हैं तो हमारे डिबेटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, हम चंडीगढ़ को, भारत को कहीं भी रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम जाते हैं, और इसके अलावा कोई भी हम हेल्थ कैंप्स कर रहे हैं, अगर हम सेवा के क्षेत्र में बात करें, ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहे हैं, हेल्थ कैंप्स कर रहे हैं, अडॉप्टेड विलेज का एक कॉन्सेप्ट है मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर, हम एक विलेज को अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो हमारा अपना गांव है, और कोशिश ये रहती है कि हर सप्ताह में कम से कम एक बार हम वहां जाएं, उन लोगों से मिले। तो DAV कॉलेज चंडीगढ़, जिसके अंतर मैं कार्य करता हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, तो धनास एक गांव पड़ता है चंडीगढ़ के अंदर, हम उधर जा करके अपना कार्य करते हैं, उन लोगों से एक पर्सनल कनेक्ट करते हैं। तो मैंने बताया सेवा का कार्य है, लीडरशिप का कार्य है, प्रतिनिधित्व का कार्य है, जो हम जाकर कहीं भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं मेगा स्केल लेवल पर, उधर हम चाहे वॉलंटियर बने। अब मैंने जब शुरुआत की थी मैं एक वॉलंटियर था, लेकिन आज पहचान बनी है वॉलंटियरिंग करते करते, तो आज मैं स्टेज पर लीड रोल में रहता हूँ, चाहे कार्यक्रम को मैनेज कर रहा हूँ या चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। तो NSS ऐसे निखार के देता है, माध्यम सेवा है, पर आपके हर गुण कला शक्ति को। अब एक और मुझे बात याद आ रही है कल्चर की, किसी ने अपना स्टेज कल्चर के माध्यम से NSS से पाया, कई बार हमारे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, आज वो एक पंजाबी एक्टर बन चुका है, उसने जो पहली परफॉर्मेंस दी थी वो NSS के स्टेज पर दी थी। तो NSS एक बहुत बड़ा गुण निखारने का काम करती है।
1: कुल मिला के आपके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसका विकास भी हो जाता है
0: जी,
1: समाज सेवा के साथ साथ
0: जी।
1: तो जिस तरह से आपने बताया कि धनास गांव को आप लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो धनास में जाके किस तरह के आप लोग काम करते हैं ताकि उसका भी विकास हो और वो भी

0: धनास के अंदर सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी वो हेल्थ कैंप से की थी। वहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर रेगुलर हेल्थ कैंप्स लगाना, क्योंकि वो लोग अपने हेल्थ को कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो उनके मेडिकल चेकअप्स रेगुलर होते रहे और उसमें कई बार हमने बहुत मेजर बीमारियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए जिसके लिए वो कम्प्लीटली इग्नोर थे। उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप्स हम वहाँ करते हैं कि जो युवा शक्ति है या जो कर सकते हैं केपेबल है एक अच्छे माध्यम से चैनलाइज हो। उसके अलावा हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ चंडीगढ़ से इन टच होके हम वेक्टर बॉर्न डिसीज जब आता है बारिशों का मौसम जैसे अभी आ गया है तो उस समय हम डोर टू डोर जाकर सर्वे करते हैं कहीं पे स्टेग्नेंट वाटर पानी ना खड़ा हो, फिर हम उस घर को कैटेगराइज करते हैं, हम टेस्टिंग भी करते हैं कहीं पर लार्वा मिल जाए तो उन घर को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर सफाई की है और दूसरी जब बारिशें पड़ती है उस समय जब वेक्टर बॉर्न डिसीज पैदा होते हैं तो वो मास स्केल पे फैल जाते हैं। तो जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था उनके पास 5-7 लोगों की टीम थी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के थे, हम 100 लोगों की टीम एड ऑन हो गई थी, तो जो काम वो 15 दिन में करते थे हमने 2 दिन के अंदर उनको करवा के दिया, तो ऐसे ही 15 दिन बाद फिर रिपीट किया तो सिर्फ 2 दिन लगे, तो इससे ये फायदा हुआ। उसके बाद जब हमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ चंडीगढ़ से भी प्रशस्ति पत्र अप्रिसिएशन लेटर मुझे मिला क्योंकि इस प्रोग्राम को लीड किया, तो यही आइडेंटिफाई किया गया कि काम का ड्यूरेशन कम हो गया और जब वो एक्शन करने का टाइम आता है तो वो जल्दी हो गया, वरना 15 दिन अक्सर वो आइडेंटिफाई करते ही रह जाते थे कि ऐसी दिक्कत है। इसके अलावा अगर किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो हम जो राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स हैं वो हम कुछ सामग्री इकट्ठा करके कुछ राशन पानी इकट्ठा करके वो उन तक पहुंचा रहे हैं, तो अलग अलग तरह से हम वहां पर स्कूल के अंदर हम जाके नशा विरोध पर हम भाषण करते हैं, उनको माध्यम बताते हैं, और कई बार एक दो बार ऐसा प्रोग्राम भी किया है जब हमने उन्हें खेल के सामान वहां पर दिए, बैट बॉल हम देकर आए ताकि शाम को वो लोग जब बिल्कुल फ्री होते हैं आइडल होते हैं, जो हमने कहानियों में पढ़ा है कि अगर कोई बिल्कुल फ्री है तभी वो नशे की ओर जाता है या दोस्तों की संगति के कारण नशे में जाता है,
1: तो आप उनकी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं। रचित जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग जब बारिशों का मौसम होता है तो आप घर घर जाके टेस्टिंग भी करते हैं मच्छर का लार्वा ना मिले, तो इससे पहले कभी आप लोग जाके लोगों को जागरूक भी करते हैं ताकि वो डेंगू मलेरिया और इस तरह की बीमारियों से बचे रहें?
0: उससे पहले हमारा एक ये फेस रहता है, हम एक पैम्फलेट्स मिलते हैं, पर्चे मिलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें लिखा जाता है कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसके लिए हम जाकर के पहले एक बार एक प्री फेस में जब बारिशें आने वाली होती है तो हम डोर टू डोर जाके एक बार अवेयरनेस जरूर करके आते हैं और उन्हें बताकर आते हैं।
1: रचित जी, क्योंकि आपने जिस तरह से लीडरशिप क्वालिटी की बात की, आपने अपने अंदर महसूस की वो लीडरशिप क्वालिटी, तो इसको निखारने में और इसको आगे लेके आने में, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आपने कई महत्वपूर्ण जो है वो नेतृत्व भूमिकाएं निभाई हैं, तो लीडरशिप करना या नेतृत्व करना आपने कहां से सीखा?
0: अब जब बचपन से मैं बात करूं, जो मैं बातें सुनता हूं अपने मम्मी से, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, तो वो बोलते थे कि मैं दो बातें हमेशा बोलता था कि क्या बनना चाहते हो, तो मैं बोलता था कि या तो मैं एक बड़े मंदिर में रहकर एक पुजारी बनना चाहता हूं क्योंकि दादी से धर्म के संस्कार सीखे थे और पिताजी की रुचि थोड़ी राजनीति की तरफ उस समय थी, अब तो नहीं है, तो उस कारण मैं बोलता था, या मैं नेता बनना चाहता हूं, उसमें भी मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, और मैं छोटी छोटी बातें करता था कि ये जो व्यक्ति है यहां पर किसी को भी एक नाम लेकर के कि इसका ये काम नहीं है, मैं प्रधानमंत्री बन के इसका ये काम करना चाहता हूं, मतलब वो बाल बुद्धि के हिसाब से मैं ऐसा कहता था। तो ऐसे जब सीखा और वो इंटरेस्ट अपने आप जब डेवलप होता गया, कॉलेज के अंदर जब आए तो DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे प्रदान किया, वो स्टेज ऐसी है जो पूरे चंडीगढ़ के अंदर आपको एक पहचान देती है, तो जब प्रोग्राम होस्ट करने लगे या हम कहीं युवा संसद हम करने लगे तो एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, छोटा स्तर था, उसके बाद बड़ा स्तर मिलने लगा, चाहे प्रोग्राम हम होस्ट करें, चाहे हम किसी NSS का लीडरशिप क्वालिटी में ले, हम लीड कर रहे हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, धीरे धीरे करके और लोगों से जब संपर्क बने तो और नेतृत्व करने के रोल्स हमें मिलते रहे और रिप्रेजेंटेशंस भी हमने चंडीगढ़ से भारत भर में या विदेश में भी दी।
1: आपने युवा संसद की बात की, तो युवा संसद में किस तरह का आपको अनुभव रहा, क्या सीखा आपने वहां से?
0: जब DAV कॉलेज के अंदर युवा संसद हुआ तो सबसे पहले मैं जो माननीय गृह मंत्री का मुझे दायित्व मिला था और वो मैंने अदा किया था, और बिल्कुल क्योंकि मेरी एक हॉबी है, कईयों को ये अजीब लगती है, मैं पूरा दिन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देख सकता हूँ लोकसभा की, सुबह से रात चलती है, जब सत्र आते हैं मानसून सत्र आने वाला है तो मुझे बड़ा पसंद आता है, पर कोई और अगर देखता है कि सुबह से रात ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देख रहा है इसमें क्या मजे वाली बात है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो मैंने पूरी अपनी जी जान के साथ जोश लगा करके जैसे मैं एक्चुअल लोकसभा में बैठा

0: हूँ उसको मैंने उतार दिया। और जब उस बात की चर्चा हुई या सोशल मीडिया नेटवर्किंग बहुत आजकल अच्छा है, वो वीडियोस वायरल हुए, तो उसके बाद फिर मुझे निमंत्रण आने लगे और कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से। फिर एक बार ऐसा मौका भी मिला कि हरियाणा विधानसभा के अंदर युवा संसद का आयोजन हुआ, तो उसमें भी जैसे दो दिन के MLA के स्वरूप, वहीं पर जिस हिसाब से उनका कार्य पद्धति होती है, दिनचर्या होती है एक MLA की विधानसभा के अंदर, उसी तरह हमें दो दिन के लिए वहां पर रखा गया। और उसके अलावा फिर जब हम दिल्ली गए तो वहां पर हमने लोकसभा प्रोसीडिंग्स भी देखी, नया संसद हो पुराना संसद हो। और जब विदेशों में भी मेरा भ्रमण हुआ तो मेरी एक डायरी में एक पॉइंट रहता था कि उस देश के संसद का मैं भ्रमण कर सकूं, तो मैंने कई विदेशों के संसदों का भी भ्रमण किया।
1: जी रचित जी, आपसे बातचीत हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: अब मुझे एक गीत याद आ रहा है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के।
1: जी बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लक्ष्य, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवा रचित जैन। रचित जी, जिस तरह से आपने बताया कि NSS में काम करते हुए आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं, तो कितने कैंप्स आज तक आप लगा चुके हैं, और कोई व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहे ब्लड डोनेशन के लिए तो किस तरह से कर सकता है?
1: ब्लड डोनेशन कैंप्स हमने डीवी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से शुरू किए थे, और जब पहली बार जब शुरू किया था तो हमारे पास कुछ ब्लड कार्ड्स हमें दिए गए, जिन कार्ड्स को हम PGI में देकर के ब्लड का एक्सेस ले सकते हैं। कई बार ये बात जब हमारे आसपास के टीचर्स में या हमारे पहचान वालों तक गई और उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट आई, तो दो तीन बार ऐसा देखा कि जब व्यक्ति की जान पर बात आ जाती है तो वो हर तरफ से हाथ पैर मारता है, खासकर जब ब्लड की रिक्वायरमेंट हो। हमने कई बार अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन देखी होगी, तो दो तीन बार कईयों ने ये बात की और मैंने बड़े हल्के से कहा कि हमारे पास तो ब्लड कार्ड्स पड़े हैं, हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, आप हमसे ले लो और आपको ब्लड एक्सेस मिल जाएगा। PGI के अंदर वो कार्ड दिया, और उसके बाद जब उसने रोते हुए बिलखते हुए जैसे वो कॉल किया कि हम बाहर से आए थे, कोई पहचान नहीं थी, फिर भी ब्लड रिक्वायरमेंट की जरूरत पूरी हो गई, तो दिल से एक महसूस हुआ कि ये जो है एक्चुअल में सोशल वर्क है। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स हम और लगाने लगे। आज तक अगर मैं संख्या गिनूं तो करीब 20 ब्लड डोनेशन कैंप्स अपने मेजर रोल में हम लगवा चुके हैं। उसके अलावा अगर कोई और ऑर्गेनाइज करता है तो हम पूरा साथ देते हैं। तो हम ब्लड डोनर कार्ड्स अपने पास रख लेते हैं, PGI में अगर एक्सेस किसी को भी चाहिए हो, हम रात भर किसी भी टाइम हमें अगर कोई भी कॉल आए, एक ऐसा मैकेनिज्म DAV के वॉलंटियर्स ने ऐसा बनाया है कि जब भी आपको वहां पर PGI में ब्लड डोनेशन कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो हम किसी भी समय आप तक वो कार्ड

0: पहुंचा सकते हैं। ऐसा मैकेनिज्म हमने मिल करके बनाया है। और अगर बात करें किसी और स्थान पर अगर रिक्वायरमेंट है, तो जिस ब्लड ग्रुप में आपको चाहिए वो हमारे पास एक डायरेक्टरी है, हम उन लोगों से संपर्क करते हैं, वो होते हैं, एलिजिबिलिटी रहती है उनकी, तो वो लोग भी ब्लड डोनेट करने आते हैं। तो आज एक ऐसा नाम बन गया है PGI के अंदर कि ये नंबर है जो मेरा 6239477534, तो उस पर कभी भी कॉल आता है तो हम तुरंत कोशिश करते हैं कि उनकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए जो ब्लड डोनर कार्ड की है।
1: जी, माई भारत और स्टेट लेवल NSS में काम करने का आपका अनुभव वो कैसा रहा?
0: माई भारत और NSS ये दोनों युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन युवाओं के लिए इतना ज्यादा है कि युवा नेतृत्व में आए, युवा का जो नेतृत्व करने की परसेंटेज है वो संसद में भी बढ़े, तो हर स्थान पे युवा नेतृत्व बढ़े। तो जब DAV से शुरुआत की एक ग्राउंड लेवल वॉलंटियर से कुछ मालूम नहीं, तो जब अपनी क्वालिटीज निखर के आने लगी तो उन्होंने स्टेट लेवल प्रोग्राम्स में साथ लेना चाहा। तो उसमें हम बात करें, कोई भी बड़ा एक कार्यक्रम होता है, जैसे अभी वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण हुए, उसका एक बड़ा स्तर का कार्यक्रम हुआ, या माननीय राज्यपाल जी के साथ कभी भी मैराथन का प्रोग्राम रहता है, या फिर मेरा युवा भारत जो माय भारत है उसके तहत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम होता है, हर स्टेट लेवल पर कोई भी प्रोग्राम हो जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत है, उसमें जरूर हमें बुलाया जाता है, उसको मैनेज करने के लिए कहा जाता है। और NSS के अंदर कैंप्स रहते हैं, कुछ कैंप्स हम होस्ट करते हैं चंडीगढ़ में, जो पूरे ऑल ओवर द स्टेट से लोग आते हैं, जिसमें से एक मैं जिक्र करूंगा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसका सीधा मतलब है कि आप अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ पर आकर के अपने राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभी बातें आप हमें बताएंगे और हम एक दूसरे को जानेंगे, तो उसको होस्ट करने को मिलता है। इसी कारण से हमें भी कई बार बाहर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है।
1: जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: ये सिलसिला जब मैं +1 में था तब शुरू हुआ, क्योंकि एक घूमने की हॉबी तो थी ही, पर जब सही शब्दों में कहूं इंसेंटिव आ जाता था कि घूमने को मिलेगा, तो वो अपने आप जो नहीं भी क्वालिटीज थी वो अपने आप उछल उछल के बाहर आने लगी थी कि ये चांस तो लेकर रहना है। तो स्कूल के अंदर एक बार स्कूल एजुकेशनल ट्रिप था, तो 2018 के अंदर USA जाने का मौका मिला। उसके बाद स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम, क्योंकि मैं सेंट जॉन्स हाई स्कूल से हूँ जो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ क्रिश्चियन ब्रदर्स इन द वर्ल्ड उसके तहत काम करता है, जिनके स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो एक प्रोग्राम चलता है स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके अंदर बेस्ट सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को दूसरे देश के स्कूल्स में भेजा जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि आप वहाँ की स्टडी, वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो आपके सेम एज ग्रुप है उनसे कनेक्ट करके आप अच्छे एक्सपीरियंस गेन कर सको। तो मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया गया था 2019 के अंदर। उसके बाद एक, क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं चंडीगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनसे मिलना हुआ, उनसे जुड़ना हुआ। तो लायंस इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो पिछले वर्ष ही एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नेदरलैंड्स के अंदर जाने का मौका मिला, उसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम, तो वहां पर 15 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम था। इसके अलावा इनकमिंग एक्सचेंज कैंप्स भी रहते हैं इसी के माध्यम से, तो कई बार हमारे पास अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप आते रहते हैं जिनको हम होस्ट करते हैं चंडीगढ़ के अंदर।
1: जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा, इतने सारे देशों में आप घूमे, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं?
0: भारत के अंदर जब हम कुछ दूरी पे जाते हैं तो एकदम से कल्चर बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रंग रूप बदल जाता है। तो ऐसे ही जब दूसरे देशों में जाना हुआ तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि भारत का आज की तारीख में नाम बहुत ज्यादा शिखर पर है। ऐसा कोई नहीं होगा जो भारत को नहीं जानता होगा, भारत के शहरों को नहीं जानता होगा, भारत के नेतृत्व करने वालों को नहीं जानता होगा। तो जब हम कल्चर एक्सचेंज करते हैं तो कुछ ऐसे देश हैं, जो अगर मैं असली बात में कहूं, जिनका कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, लेकिन भारत ऐसी है, हम कितना भी पूर्व में चले जाएं कुछ ना कुछ संस्कृति निकल आएगी और हम हर बात में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर पाएंगे, चाहे वो नाच गाने में हो, खान पीन में हो, कुछ जो युद्ध लड़े गए हैं, हर एक बात में भारत की एक कुछ ना कुछ क्वालिटी है वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो जब भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला या एक्सचेंज करने का मौका मिला, तो उस समय भारत के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था जिसको मैं गौरव में बना सकूं। तो मैंने ऐसा गर्व महसूस किया जब भी मैं गया कि मैं एक भारतीय हूँ।
1: तो जब आप अपनी हम उम्र जो वहाँ के युवा हैं उनसे मिले, तो किस तरह की बातें हुई, किस तरह से अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय परंपराओं को वहाँ पर आपने बताया उनको?
0: जो सबसे पहली बात मुझे याद आ रही है कि जब कभी भी हम डांस मोड में होते थे, जब कोई पंजाबी गीत चलता था, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक माहौल तो तब बनता था। और जब हम वापस आने वाले होते थे तो हर एक के फोन में पंजाबी प्लेलिस्ट की एक लंबी लिस्ट बन गई होती थी। तो सबसे पहला इंप्रेशन तो मुझे पंजाबी गीत का याद आ रहा है, क्योंकि मैं भी पंजाब प्रांत से हूँ, तो जब भी

0: म्यूजिक की बात आए तो मैंने देखा कि जो पंजाबी म्यूजिक है, पंजाबी गीत है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, फेमस है, सबको बहुत पसंद आता है। उसके अलावा जब कभी मौका मिला हम क्यूजीन को रिप्रेजेंट कर पाए तो जितना भी मैं बना सकता था, जो भी मुझे आता था, कई बार वो व्यंजन, वो भोजन बना करके परोसा, तो वो जब अलग फ्लेवर्स, क्योंकि मैं मसाले और सब कुछ भारत से ही लेकर गया था, क्योंकि मुझे मालूम था वो चीज नहीं मिलेगी, तो वो जो मसाले हैं भारत की स्पेशलिटी है, क्योंकि हिस्ट्री में पहले से पढ़ते आए हैं कि भारत स्पेशली ट्रेड करता था मसालों के अंदर, चाय के अंदर, तो वो जब हम लेकर गए, हमने चाय सर्व की, हमने मसाले सर्व किए उस व्यंजन में डाल करके, तो वो एक अलग पहचान बनी। और भारतीय हमेशा एक गुणग्राही होता है, जब उनसे हमने कुछ सीखा तो कुछ ऐसी बातें हैं कि यूरोप के अंदर जब हम थे हमने पंचुअलिटी सीखी। मैं अपने जीवन का किस्सा बताऊं, जब मैं जर्मनी में था तो मैंने एक टिकट का टाइम देखा कि इतने बजे ट्रेन का टाइम लिखा है, सिर्फ एक सिंगल टाइम कह सकते हैं 5 बजे है, तो मैं दौड़ करके पहुंच रहा था, आई वॉज रनिंग लेट। मैं वहां पर जब पहुंचा तो वो 5 बजे का मतलब ये था कि वो ट्रेन वहां से निकल जाएगी, ये नहीं था कि वो ट्रेन वहां पर आ जाएगी, और वो ट्रेन छूट गई। तो फिर जब मैंने हेल्प डेस्क पे बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पंचुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो सबसे पहली बात मैंने सीखी। तो एक जो टाइम के लिए पंचुअल रहना है, वो मैंने यूरोपियंस, मैंने जहां भी यूरोप के अंदर गया वो मैंने सभी से सीखा कि पंचुअलिटी बहुत ज्यादा है, अगर वो टाइम और डेट फिक्स है तो वो फिक्स है।
1: जी रचित जी, डीएवी कॉलेज में आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं किस तरह का वो अनुभव आपका रहा और कितनी ये यात्रा चुनौतीपूर्ण रही आपके लिए।
0: डीएवी कॉलेज के अंदर 5-6 वर्षों से जब एक ग्राउंड लेवल से काम किया, बस एक यही रहता था कि हम एक कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलेज का नाम होना चाहिए, हमारी पहचान हमारे नाम से बाद में और कॉलेज से पहले है, क्योंकि कहीं भी अगर हम चंडीगढ़ में जाते हैं या भारत में जाते हैं तो हमारे कॉलेज से हमें ज्यादा पहचाना जाता है। तो जब ऐसा काम शुरू किया और जब क्वालिटीज निखर के आई, चाहे वो सेवा की है, लीडरशिप की है, रिप्रेजेंटेशंस की है, तो कॉलेज का नाम आ गया। और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर मेरे जीवन में निभाई तो वो डीएवी कॉलेज ने निभाई।
1: रचित जी, क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े हैं और कई जो आपको पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन से पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है।
0: अवार्ड्स में अगर मैं याद करूं तो जैसे आपने पहले जिक्र किया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस वर्ष मिला 2025-26 का कॉलेज से, और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा रिपब्लिक डे पर यूथ कैटेगरी के अंदर सोशल एक्टिविज्म में माननीय राज्यपाल द्वारा पिछले वर्ष मिला था गणतंत्र दिवस पर, और उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे पर चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा महापौर के द्वारा मिला था। तो ये सबका कारण सेवा ही था, और NSS जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसकी एक कैटेगरी चलती है अवार्ड्स की, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलती है। तो राज्य स्तर के जब अवार्ड्स हुए थे 2023-24 में, तो उसमें बेस्ट NSS वॉलंटियर का अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिला था। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं, उनके बड़े कार्यक्रम हुए जब उनके साथ मिलकर काम किया, तो चाहे भारत मंडपम में हुआ, आई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, निफा है, कई सारी ऐसी समाज सेवा की राष्ट्रीय स्तर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ।
1: जी, NSS स्टेट अवार्ड और रिपब्लिक डे यूथ अवार्ड से आपको नवाजा गया
0: जी,
1: वो क्षण कैसा रहा आपके लिए, क्या अनुभव हुआ आपको?
0: जब राष्ट्रीय सेवा योजना का अवार्ड मिला तो जब स्टेज पर चढ़े तो जो 4-5 साल राष्ट्रीय सेवा योजना को दिए तो वो पूरे फ्लैशबैक हो रहे थे कि कब पहली बार स्टेज पे चढ़े थे राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य करने के लिए, और आज कब सम्मान पत्र लेने के लिए हम ऊपर चढ़ रहे हैं, पूरा फ्लैशबैक चल रहा था। तो जब एस्कॉर्ट करके वहां के जवान साथ लेकर के गए, मंच पर गए, माननीय राज्यपाल द्वारा वो प्रशस्ति पत्र मिला, तो वो एक ऐसा अनुभव था कि जैसे कुछ जीवन में कमाया है और चंडीगढ़ के लिए कुछ किया है, जो मेरी कर्म भूमि है, इसके लिए हमने यहाँ काम किया, जैसे एक टिक मार्क, एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो आप यहाँ के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए कर रहे हो कि वो सही कर रहे हो और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: जी रचित जी, क्योंकि आज बहुत से युवा साथी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में देश का, भारत का प्रतिनिधित्व किया और कितने सारे प्रतिष्ठित सम्मान आपको मिले, तो आप चलते चलते जो युवा साथी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे समाज सेवा के बारे में, जिंदगी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी अंदर की आवाज कहती है कि मुझे ये करना चाहिए, जैसे मैंने सुना कि मुझे लीडरशिप में जाना चाहिए या मुझे सेवा में जाना चाहिए या मुझे इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहिए, जो भी बात की, या घूमने का शौक है, ट्रैवल में जाना चाहिए, उस आवाज को कभी नहीं दबाना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर उस आवाज को दबाया जाए वो एक हत्या के समान है, अगर हम अपनी आवाज को दबा रहे हैं, क्योंकि जब वो अंदर से आवाज आती है तो वो व्यक्ति की जी जान उसमें वो लग जाती है, वो उस कार्य को इतनी परफेक्शन के साथ कर पाएगा क्योंकि वो अंदर से आवाज आई है। हम सब

0: के अंदर परमात्मा का एक अंश है और हमारे में वो शक्ति है कि हम जो अंदर से आवाज आ रही है वो कार्य को पूरी तरह से कर सके। तो वो आवाज नहीं दबानी चाहिए। तो वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है या वो एजुकेशन में जा रहा है, वो सर्विस में जा रहा है, जो हमारा दिल कह रहा है, मैं मानता हूं, हमेशा सिर्फ दिल नहीं कहूंगा, दिल और दिमाग जो कह रहा है वो सही भी हो, कई बार गलत आवाज भी आ सकती है, वो परखना काफी जरूरी है। अगर आवाज सही है उसको परखा जाए तो उसके बाद उसमें जी जान लगा देनी चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, सफलता शिखर पर मिलेगी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान कर, अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर जब इंसान जी जान से मेहनत करता है, मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, तो मंजिल हमेशा उसके कदम चूमती है, हमेशा वो इंसान, वो शख्सियत आसमान की बुलंदियां छूती है। रचित जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, लक्ष्य कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया
1: दोस्तों, आज लक्ष्य कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे, बहुत छोटी उम्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवा, श्री रचित जैन। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब आज का लक्ष्य कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: लक्ष्य।

ये विविद भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओ, इस समय 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फरमाइश आपकी।

0: जानी दुश्मन फिल्म के लिए आपने कार्यक्रम का ये पहला गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। पसंद करते थे कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। शेरपुर कला गाजीपुर के आप हमारे श्रोता हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत को आपने भी पसंद किया। आप हैं चकला बाजार समाना के हमारे श्रोता पप्पू, राजा, संगीता, हंसमुख और आपके परिवार के सभी सदस्य।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने इसे गाया है प्रेम रोग फिल्म के लिए। पसंद किया डबवाली के हमारे श्रोता हैं सुनीता, संजय, अनिल, मीनू और जे के बुकाड़िया।

आपने प्रेम रोग फिल्म से ये गीत सुना, और अगला गीत जो अब हम आपको सुनवाएंगे महादेव घाट अमलेश्वर के हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है। आपके नाम हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। करणवीर हाउस बठिंडा के हमारे श्रोता हैं परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, एकम, दमन, वीरेंद्र, सिमरन और अभिजोत। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत है, फिल्म का नाम आशिक।

दिल तो पागल है, आपने सुना इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। ये गीत सुनवाने के लिए हमें आप सब ने लिख भेजा। मलोट कैंप पंजाब के आप हमारे श्रोता हैं, सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। लीजिए अब सुनिए बंदिश फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले ने इसे गाया है। पसंद आप सबकी, गाँव नथाना। आप हैं जी हरजिंदर छिंदरा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। मुल्लांपुर दाखा मंडी के आप हमारे श्रोता हैं, बिट्टू जैन, मट्टू जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, नगीना जैन, मनोज जैन, समता जैन, अरिहंत जैन और सुरभि जैन। आप भी पसंद करते हैं इस गीत को। मुक्तसर के आप हमारे श्रोता हैं, बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइश आपकी। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 12 बजने वाले हैं श्रोताओं, अब आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही

0: देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 12:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप मुंबई केंद्र से सुनेंगे।

0: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ आपने सुना। सुजाता फिल्म के इस गीत में आवाज आशा भोसले और साथियों की। आज गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जन्म जयंती है और उन्हीं के मिले जुले गीत आपको इस कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड

0: The success of the film is probably, I think, was destined or decided by him. तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: हमसे कुछ न बोल।
1: 9:11 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर यादों की महफिल। आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है और रात 8 बजे हवा महल में सुनेंगे झलकी अंगारे, लेखन सोमनाथ नागर का, निर्देशन सत्येंद्र सरत का। और इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके गीतों के जरिए।

चमकत लचकत जाए, चमकत लचकत जाए। फिर ना देखा, फिर ना देखा, ना देखा, ना देखा, ना देखा।

0: कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए, मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल।
1: अरे
2: बात एक रात की। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
6: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म गाइड से। शैलेंद्र ने इसे लिखा। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे बंदिनी फिल्म से। इसे लिखा शैलेंद्र ने। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनकी जन्म जयंती पर।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
2: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर, और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुलजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, तुषार भाटिया का संगीत।

अभी तक हमारी श्रोता सुन रही थी कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए श्रोताओं विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया, FM 107.2 MHz पर। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। एक बजने वाला है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

में एक बजकर 5 मिनट पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन पाएंगे। उसके फौरन बाद 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए प्रादेशिक पंजाबी समाचार। इसी तरह श्रोताओं, शाम 6:10 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनवाए जाएंगे और प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप फिर से सुन पाएंगे शाम 6:20 पर। हमारे यहाँ से फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर। शाम 5:05 पर भी हम आपको कुछ फिल्मी गीत ही सुनवाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा दोपहर 1:30 पर। वहीं से श्रोताओं दोपहर 2 बजे आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी।

आकाशवाणी दिल्ली से आपके लिए हम हिंदी में समाचार रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर। श्रोताओं, हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से शाम 5 बजे और फिर शाम 6 बजे भी रिले करेंगे। रात 8:45 पर और रात 11 बजे भी हम दिल्ली से ही हिंदी में आपके लिए समाचार रिले करेंगे। विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुनेंगे सदाबहार नगमे दोपहर 2:30 पर। हर रोज दोपहर 3 बजे मुंबई केंद्र से ही आप सुना करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे फिर वहीं से होता है कार्यक्रम पिटारा। आज इस कार्यक्रम में होगी हेलो फरमाइश। श्रोताओं, ये फोन इन प्रोग्राम है।

शाम की सभा में हमारी केंद्र से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे 5:20 पर। एक और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन सकते हैं आप शाम 5:30 पर। ये कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रायोजित है। आज शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम समाचार दर्शन। कुछ पंजाबी गीत सुनवाएंगे आपको शाम 6:40 पर और फिर शाम 7:47 पर भी। मुंबई केंद्र से शाम 7 बजे हम आपके लिए रिले किया करते हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला। हमारे यहाँ से प्रादेशिक मुख्य समाचार भी सुनवाए जाते हैं आपको शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। हवा महल कार्यक्रम आप सुना करते हैं हमारे मुंबई केंद्र से। समय रहेगा रात 8 बजे। आज होगी इसमें झलकी अंगारे। कुछ नए फिल्मी गीत मुंबई केंद्र से ही आप सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। ये आप सुन सकते हैं रात 8:15 पर। आपके लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा हमारे मुंबई केंद्र से ही रात 9 बजे। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। और आज के फनकार हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। श्रोताओं, रात 10 बजे उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है छाया गीत। ये कार्यक्रम आज आपके लिए प्रस्तुत करेंगी नेहा अगरकर। तो ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिली होने वाले कार्यक्रमों का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों। श्री मोदी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC की 100 साल की यात्रा में बहुत कुछ बदला है, फिर भी इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन UPSC पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: इस दौरान श्री मोदी ने समय अनुसार सिविल सेवा के चयन प्रक्रिया को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर भी बल दिया।
1: हमारी सिविल सर्विसेज भी नए बदलाव की मांग करती है, इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027-28 मंडी सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2027-28 मंडी सीजन के लिए रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई उस ऐतिहासिक घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय करने का फैसला किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन लागत पर मिलने वाला ये लाभ किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई MSP दरों के तहत किसानों को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर गेहूं के लिए 106%, रेपसीड और सरसों के लिए 96%, मसूर के लिए 92%, चना के लिए 59%, जौ के लिए 58% और कुसुम के लिए 50% का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि हरियाणा के किसान ऐसे फैसलों से लाभान्वित होते रहेंगे और देश के खाद्य भंडार को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में किसानों को समय पर गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन भाड़ा दरों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत हिसार, चौहाना और सिरसा समेत प्रमुख प्रसंस्करण केंद्रों से प्रदेश के 80 से अधिक वितरण केंद्रों तक बीज पहुंचाए जाएंगे। साथ ही कृषि और शिक्षा के समन्वय को बढ़ावा देते हुए राज्य के PM श्री स्कूलों के लिए मिनी सॉयल टेस्टिंग किट खरीदने के टेंडर को भी हरी झंडी मिली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी तथा DLED की परीक्षाएं 24 अक्टूबर तक चलेगी। आज से शुरू हो रही परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ एवं सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि 10वीं व 12वीं के कक्षाओं की परीक्षाओं में प्रदेश भर के 140 परीक्षा केंद्रों पर करीब 82,037 परीक्षार्थी व छात्र अध्यापक बैठेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोता, इस समय 1:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं इन्हीं आवाज़ों में जुगनू फिल्म से गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, ये धुन है

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: दीजिए सुनिए अब आराधना फिल्म का एक गीत किशोर कुमार की आवाज में।

स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। जहां स्वच्छता का वास होता है, वहीं पर खुशियों का निवास होता है।

0: स्वच्छता है हम सब की जिम्मेदारी और हर नागरिक की भागीदारी। हमें प्रण लेना चाहिए, ना गंदगी फैलाएंगे ना फैलाने देंगे। याद रखिए, स्वच्छ गली स्वच्छ मोहल्ला, यही है स्वस्थ जीवन का रास्ता।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, जो हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
3: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, हो रेशम का।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है उम्र की। हमारे साथियों ने जो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत की कौन सी फिल्म का है हमने आपसे पूछा था, जब प्यार किसी से होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे एक मित्र कह रहे 100 साल तो नहीं मगर 25 साल जरूर हो गए प्यार करते करते। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र को मात नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, लेकिन कार्यकुशल होना एक अलग बात है और उसके लिए सभी अपने आप को बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रायः तैयार ही रखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन दिल तो जवान होता है और जवान ही रहना चाहिए हर वक्त। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सफ़ेद बालों से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किंतु हम उम्र लोग भी अंकल कहने लगते हैं तब बालों को काला करने का विचार आता है। भई ये जो अंकल कहने की जो एक प्रथा है, अंकल और आंटी कहने की, ये बड़ी ही कह सकते हैं कि एक अजीब सी परंपरा है क्योंकि कई बार लोग हम उम्र को भी अंकल या आंटी कह देते हैं या कई बार वो अपने से छोटों को भी कह देते हैं इस तरह से, तो ये संबोधन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 100 साल पहले मतलब 1926 से 2026 में भी प्यार जारी है। भाई ये तो आपका एक चुटिला अंदाज है। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो मानती हूँ कि घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो तो एक चीज़ जो मुख्य तौर पर बनी रहती है वो है अनुशासन। व्रत त्यौहार उनके होने से कुछ और ही चमक लिए होते हैं। ये संचार क्रांति का दौर है। मेरी मम्मी ने अभी हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा और उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा भी है, जैसे बचपन में खींच कर ले गया। कैसे वे एक एक अक्षर बड़े धीरज से सीखती थी, सिखाती थी। आज उसी धीरज की जरूरत हम सबको है और यही धीरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो धैर्य धके और अपना बचपन याद करें, बुजुर्गों की हर बात सुने और समझें। हमारे एक साथी ने यही बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के बारे में एक से ज्यादा बार पूछने पर बच्चे झुंझला जाते हैं, तब हमें याद आता है कि उनका बचपन जब हम एक सवाल का जवाब 50 बार देते थे। घर के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को लेकर एक बात अक्सर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहते हैं कि जब तुम उस दौर में जाओगे जब हम उस दौर पे थे, यानी माता पिता बनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने तुम्हें किस तरह से पाला है। तो क्या आपको भी ये बात सुनने मिलती है, किस तरह से, हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ना कल की चिंता थी ना आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम। बेशक पैसा कम था लेकिन बचपन में दम था। उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे लोग भी हैं जो शान से कहते हैं कि बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं, और अपने आप को खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रखते हैं। फिर भी हमारी जिंदगी की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर बचपन होता है। वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ दिल बड़ा होता जाता है, और उसके अंदर नए नए रिश्ते और दोस्त, नए नए रुचियाँ और शौक शामिल होते जाते हैं। जब हम बचपन में थे, यानी वो कह रहे जब हम यंग थे, तब हमारे पेन फ्रेंड हुआ करते थे और अब रेडियो फ्रेंड और वॉइस फ्रेंड हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से भी हम अलग अलग तरीके से खुद को देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। और अब आप ये सुन सकते हैं एक गीत जिसे हम आपको सुनवाने वाले हैं, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है आपसे पूछते हैं यही सवाल। लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस बात के लिए

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंक टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: जरा सी देर में गुटरगू और जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। हम बुजुर्गों में कैसा सामंजस्य था, भले भरा पूरा परिवार था लेकिन हमारी श्रीमती जी के साथ चाय पीने, खाने और सोने में कभी कोताही नहीं करती थी। कहीं जाना भी हो तो साथ में भी जाती, अकेले जाने नहीं देती थी। इतना प्यार जवानी में कहाँ था, तब इतनी परवाह कहाँ थी। बस हम कमाने में लगे थे और वे घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती थी। अफसोस, साल भर पहले हमें छोड़ गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन का वो मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं और वो दौर के बाद जैसे जैसे कदम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो अंदर उत्साह और जोश का संचार होता है। यही जोश और उत्साह भविष्य को संवारने में मदद करता है और युवावस्था से सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको वरिष्ठ होने तक निभानी पड़ती है जिम्मेदारियां। हमारे जीवन के इन तीनों पड़ावों में सबसे सुनहरा दौर बचपन का होता है, जो कभी लौट कर नहीं आता। वहीं हमारे साथी कहने कि हम भी सीनियर हैं पर फिर भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे टोकना नहीं पड़ता पर वो लोग हर बात पर टोकते हैं, खाने पीने में और रोका टोकी करना, डांटना। वैसे कई बार हम ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन वाकई बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और जिन चीज़ों की उन्हें मनाही होती है वो जब वो खाने लगते हैं तो फिर घर के बच्चों को तो टोकना ही पड़ता है, ना माने तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी सेहत के लिए या आप

कि भले के लिए टोका जा रहा है, तो वहां आपको थोड़ा खुद भी समझना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिनकी वृद्धि होती है वही वृद्धजन कहलाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कैसे आज की भारत में बताया कि समय के साथ शरीर तो ढलता है लेकिन प्रेम और आत्मा बूढ़े नहीं होते, और उम्र की तीनों अवस्थाओं को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय एक ही धागे में उन्हें पिरोया गया है। जहां बचपन यादों में है, जवानी दिल के धड़कन में, और बुढ़ापा इन दोनों के अनुभवों को समेटे हुए एक शांत सुखद ढलती शाम का आनंद ले रहा है। भाषा शैली काव्यात्मक, रोमांटिक और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल में बचपन की मासूमियत और जवानी की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहती है। प्रेम और प्यार में बिताई हुई हर मुलाकात, हर पल की यादें जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की इस ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नजर और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं, और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

उनका ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को, जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और इनके मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी जिंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफर से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफर महकती यादों का सफरनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है, जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई ना कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उधर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहे कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है, हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें जीवन के, जवानी की मीठे पल, दो दिलों का टकराना बुढ़ापे में, उन सुनहरे पल को याद करना, शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूँ, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती की ये वरिष्ठ उद्घोषक है, जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है, हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हों, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती हैं। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, पर मन और भावनाएं हमेशा तरोताजा रहती हैं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है, पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज्यादा धड़कता है। वैसे तो नजरें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, आवाज भी पहचान लीजिए।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तुगमांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें
3: होती है दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
4: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वही हमारे एक साथी कह रही है, मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूँ पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूँ। मेरा अपने से छोटों में मन लगता है। मैं अपने आप से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूँ। विविध भारती में भी एक्टिव हूँ, फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूँ। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे जो गीत कहने वाला है आपके लिए, फिल्म का नाम बताइएगा।

0: नजर नहीं हट।
1: कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इसी संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें

ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

dice

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बना

0: अपना नजर नहीं।
1: ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य

0: संस्कृति जनहितैषी सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और

0: दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: को हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2000

0: 2045 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
1: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
2: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंकर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम।

0: देविया फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: सखी सहेली
1: नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
2: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
1: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
2: और इतने सारे दिन लेकर आए
1: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
2: हाँ,
1: तो हम लेकिन बीच बीच में बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
2: मुझे कुछ कहना है, हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू। हमने कहा था इस विषय पर कुछ कहें, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहने शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल। हाँ, किस तरह से हो,
1: कैसे करनी चाहिए, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है।
2: हाँ,
1: बस कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना।
2: देखिए, आते संगीत, आते
1: क्योंकि
2: आते
1: संगीत का दिन है ना
2: जी।
1: तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया।
2: तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं,
1: हाँ,
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी, क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं, जरा बताइए तो, सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना, बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो एक तो है शाकाहार दिवस, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया बढ़िया, वैसे शाकाहार में फल भी आता है, सब्जियां आती है, सब कुछ आता है,
0: जब उपवास करते हैं तो बस फलाहार बोल के जो खाते हैं हम,
1: हाँ वो फलाहार भी वही है, तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया, और हमारा खून भी बढ़ाती है, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती है, तेज करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाये, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी, तुम्हें क्या पसंद है,
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ गए?
1: देखो एक तो शाकाहार दिवस है, समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
0: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है, तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे,
1: बिल्कुल
0: तब।
1: आप लोग भी बताइए आपको क्या पसंद है, चाय की कॉफी,
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है, तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना,
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है, और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन लोग खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते हैं क्योंकि सभी एक ना एक
1: शाकाहार के साथ में
0: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है शाकाहारियों की, इनकी थाली को देखकर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है, तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात करते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है,
1: बिल्कुल, लेकिन आज हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आपको जिस कलर की जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए, और देखिए खाने के समय भाषण सुनना ऐसा ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें, उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का, तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे, तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप, और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपकी जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोल वाला?
0: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है, कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर,
0: और बहुत दिनों से खाया नहीं।

0: मोस्टली भी पनीर तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की, तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में ढाल लेता
1: है। हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी, भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है, तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोलिए अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
1: बिल्कुल, लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
0: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना,
1: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या बात है।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
1: बिल्कुल, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: तो आरती के 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद सबको इंतजार होगा, लाइव सुनना तो सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो की है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों की चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की,
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता के

0: में बढ़ सका और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
1: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
0: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
1: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
0: यही सबसे बड़ी बात है कि हाँ। अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
1: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
0: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
0: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा। हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं,
4: नहीं सभी
5: तो
4: को आलू पसंद है, सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी
5: बिल्कुल, क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है, फिर क्या हुआ, वो रह गई।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था ना, क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल, और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो पनीर उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
5: वो तो है नहीं है। लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। हाँ। आलू को बैगन के साथ भी खा सकते
4: आलू को किसी हैं। आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं।
5: बिल्कुल, आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हैं। ऐसी सब्जियां जिनके साथ में पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
4: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल
5: ले लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है, अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया होगा हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे, वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
0: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
1: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे, लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है, बल्कि महसूस होता है, याद बनता है, और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं, या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके। हाँ। तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूं, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में खुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की

0: गूंजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
1: वाह क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
0: एक बिल्कुल गीत दो सुनना ही चाहिए
1: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ

0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
2: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
1: और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भाषा को, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
1: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
2: बिल्कुल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन पे, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
1: हाँ, और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
2: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
1: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
2: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को, किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते भी आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी हैं जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
1: बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
2: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: इश्क है।
1: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की ही नहीं।
2: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
1: इतने सस्पेंस आपने ले आया। लेकिन वृद्धजनों की देखभाल की उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
2: बताया। हम उसी पे आ रहे हैं, हम लोग उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
1: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाए, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाए। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
2: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वे मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है कि उनके दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिए ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहे। तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं, तो वो बात भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने

0: ग्रैंड पेरेंट्स
1: बुजुर्ग हैं जी।
0: जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
1: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसके जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल

0: रोहन है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो कि लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हो तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन डी कैल्शियम ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहे और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दे। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्ध जन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: साथी लिख रही कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो कॉफी
1: अच्छा।
0: पी रहे हैं वो, और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है। कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ, खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब हो जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें
1: बिल्कुल
0: कॉफी और चाय दोनों
1: दोनों
0: पसंद आ
1: दोनों
0: रही है।
1: चल रही हैं। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं। इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि
0: भरवा
1: ये
0: टिंडे
1: सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला मिर्च, और सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है सच में।
0: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है। और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब
1: सच
0: प्रोग्राम
1: में
0: के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब
1: बिल्कुल।
0: हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं। कॉफी भी पी सकते हैं
1: कॉफी
0: हम, कॉफी
1: कॉफी
0: पियेंगे
1: आज
0: या
1: तो
0: चाय
1: कॉफी
0: पियेंगे।
1: पियेंगे, आज तो कॉफी पियेंगे, क्योंकि आज कॉफी दिवस है तो कॉफी तो
0: हाँ,
1: पीनी ही पड़ेगी हमें।
0: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में से मनाना शुरू किया था उन्होंने। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा,
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: तो बहुत शुक्रिया हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
1: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन हाँ। चाय ने बाजी मार ली है।
0: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
1: आलू भी जीता है।
0: और हमारे

दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 0222867 0288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 0224002462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बात।

0: करते हैं और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं, सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
0: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है, लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
1: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
0: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर हैं?
1: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है मोजों की रवानी है।
0: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा,
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा क्या बात है, और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी,
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजाज धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है। बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राजा का ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
0: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे।
0: अच्छा,
1: और वो आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाएं आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
1: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है।
0: अच्छा,
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं, नुकसान हो गया है।
0: जी जी, समझ रहे हैं, मौसम खराब हो गया ना अचानक इसलिए। अच्छा, हमें बताएं विविध भारती, इतने ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम उस जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जाती थी, तेज होती थी। फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ।
0: जी,
1: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच पे ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो साफ क्लियर FM है हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM सेट है, बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
0: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
1: जी, आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा अच्छा। आ जाता है सुनकर।
0: अरे बहुत शुक्रिया, तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
1: गाना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
0: बस ऐसे जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे, ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना
1: सर,
0: सुनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना उनके सराफ मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: तो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर हमारे यहाँ पे सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का कीस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और वो कचौड़ी?
1: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और समोसे ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना था सर मुझे।
0: कौन सा?
1: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
0: ओके,
1: आवाज में
0: क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ सर, भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी,
1: और आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी,
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 150-200 फोन लगाए होंगे सर, कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आज थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हों, शहनाज जी हों, चाहे ममता जी हों, जितने भी आज थे, सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से?
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाया, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
1: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
0: नहीं लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
1: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है, और नमक वाली चाय भी कायम है, और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
0: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
1: जी जी सर,
0: क्या बात है
1: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर यूँ चलना देना यूँ छोड़कर।
0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज। आपके लिए ये गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: बोलिए। गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सोहन बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है कपास को।
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना।
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हमारा फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है,
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश?
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर कुमार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हाल चाल भैया?
1: बढ़िया सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया एक्सीडेंट, कैसे हो गया?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थे सर, डिपो में यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर फट गया था सर, अभी 2 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर।
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल लोग गाड़ियां वाड़ियां ठीक से नहीं चला रहे मालक?
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी
0: है ना। हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकले तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाए, और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: दूसरी बार? हमें तो याद नहीं है
1: सर, अभी हुई थी ना जब आप पूछ रहे थे अमिया लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई?
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हाल चाल, आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा अच्छा
1: सर, वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा, तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही, ये बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या...

ख्याला चंदन है तेरे ख्याला चंदन हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ।

मैं किधर को जाता ही दंडाना, क्यों पास ना आता ही दंडाना, जा मारिए बाता दंडाना, दिल तोड़िए घाता दंडाना।

पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

मैं माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। मैं माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज़ तो हमारे दिलों में बसी है बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सफर का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहें, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और कई वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़े टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर ये। हाँ। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा।
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा।
1: और जब जब समय मिलता है सर आपका प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइनें
0: है। इरशाद
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर।
0: जी नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं विविध भारती के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: सर,
0: शुक्रिया।
1: और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर,
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेतांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
1: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिस्तर गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
0: हाँ जी,
1: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों का राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
0: जी,
1: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
0: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया,
0: वाह भाई वाह,
1: तरह के गाने के बोले सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867088 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 40024662। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। दिन में 12 बजे से
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ के इंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होना चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तक कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता

0: अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समारोह के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन भाषण देंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि जीएमसी बाल योगी संसदीय गरिमा, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणादायक विरासत हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। श्री मांडविया ने देशभर के सभी शारीरिक शिक्षा पेशेवरों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों के स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उधर स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को और हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।
2: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं जुदाई फिल्म के इस गीत से, आवाजें हैं अलका याग्निक और अभिजीत की।

0: दोस्तों भी आपने सुना मस्ती फिल्म का गीत उदित नारायण और अभिजीत की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
2: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. आज हम रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ऐसे रिश्ते जो माता पिता और अपने यंग चिल्ड्रन के बारे में है. रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स. पेरेंटिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. उसमें भी अगर बच्चा टीनेज यानी 13 साल के 19 साल के बीच है तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है. वजह यह है कि इस दौरान उनमें शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव होते हैं. दूसरी ओर इसी उम्र में बच्चे की शिक्षा ऐसी पड़ाव पर होती है जिससे उसका पूरा करियर तय होता है. टीनेज में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से बच्चे के सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इससे बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनुशासीन हो सकता है. इस उम्र में बच्चे अपनी प्राइवेसी को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं. यही कारण है कि वे बड़ों से अपनी कुछ बात छुपाने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर सही समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बच्चों को भविष्य में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए टीनेज के दौरान बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. आज रिलेशनशिप प्रोग्राम में, खासकर आज लम्हे के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेरेंट टीनेजर रिलेशनशिप के बारे में. इस प्रोग्राम में टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग की साथ ही जानेंगे कि टीनेजर बच्चों की पेरेंटिंग में माता पिता की क्या भूमिका है, क्या किरदार है. इस उम्र के बच्चों के साथ पेरेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर और दोस्तों से ज़्यादा करीब होने लगते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना कि उनके

दोस्त समझ सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक टीनेज बच्चों की परवरिश परिवार के लिए सबसे कठिन चुनौती में से एक है। हार्मोन में बदलाव और शारीरिक परिवर्तन जैसे चीजें से जुड़े रहे टीनेजर्स को लगता है कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, खासकर पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं। इससे वे अकेले और भ्रमित महसूस कर सकते हैं। वही पेरेंट्स इस बात से परेशान हो सकते हैं कि उनका बच्चा अब पहले की तरह अनुशासित नहीं है। कई बार ये चीजें बच्चे और पेरेंट्स के बीच मनमुटाव के वजह भी बन जाती है। इसलिए टीनेजर्स की पेरेंटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बच्चों में कैसे बदलाव आते हैं टीनेज में। टीनेज के दौरान बच्चों में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि ये बदलाव शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक तीनों तरह के हो सकते हैं। टीनेज बेहद नाजुक उम्र होती है। इसमें बच्चे नए दोस्त बनाना, नई नई चीजों को जानना, समझना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा उनमें कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आता है, दोस्तों की कंपनी ज्यादा पसंद आती है, गैजेट से अधिक लगाव होता है, खान पान से जुड़ी आदतों में बदलाव होता है। इस उम्र में बच्चे किसी भी नई चीज को जानने समझने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वे बिना किसी की सलाह के खुद से निर्णय लेने चाहते हैं, लेकिन कई बार वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टीनेज में बच्चों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। इसमें माता पिता ये समझना जरूरी है कि बच्चों में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को उनके साथ बैठकर हर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, जिससे वे कोई भी निर्णय बिना पेरेंट्स की सलाह के न ले। टीनेज में बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है। ऐसे में माता पिता को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वह कब कहां आते जाते हैं, मोबाइल फोन में क्या देखते हैं, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने बच्चों का भविष्य तैयार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। दैट टू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। जब बच्चे बात करते हैं तो पूरा फोकस्ड रहकर, अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उनकी पूरी बात सुने, बीच में न टोके। उन्हें पर्सनल स्पेस दे, लेकिन दिनचर्या पर नजर बनाए रखें। गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर लिमिट तय करें। ये भी जानकारी रखें कि वे अपने फोन में क्या देखते हैं। उन्हें अपने मन की बात शेयर करने के लिए प्रेरित करें। उनके सपने और लक्ष्यों का सपोर्ट करें। उन्हें हेल्थी डाइट और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करें। उन्हें स्वतंत्रता दें, लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाएं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए मारने पीटने का तरीका अपनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। वे माँ बाप से डरने लगते हैं और उनके साथ अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराते हैं। इसके अलावा माता पिता टीन एजर बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ और गलतियां करते हैं, जिनसे बचना चाहिए। इसे कैसे समझे हम टीन एजर्स के पेरेंट्स में न करे कैसे गलतियां, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा न पेश आए कि बच्चे बात करने से डरे, उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाए, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना न करें, उसे हर चीज के लिए मना न करें, किसी बात पर चिल्लाए या गुस्सा न करें। बच्चों को मारने पीटने की गलती कभी भी न करें दोस्तों। अगर बच्चे जवाब देते हैं तो डांटे नहीं, समझे उन्हें। कभी आप भी ऐसे थे, आप भी उस किशोरावस्था से गुजर के ही अडल्ट बने और उसके बाद एक पेरेंट। अपने बचपन और अपने यंग डेज को याद कीजिए। टीनेजर बच्चों के पेरेंटिंग के लिए कुछ सुझाव है, जो लम्हे प्रोग्राम में चेतन आपसे शेयर करेंगे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर और आर्ट जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। एनकरेज देम टू लर्न फाइन आर्ट्स टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद

0: प्रोडक्टिव वर्क, उनके अच्छे प्रयासों और उपलब्धियों की तारीफ जरूर करें। उन्हें लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाएं। उन्हें उनकी पसंदीदा एक्टिविटी करने दें, उन पर लगाम न लगाएं। उन्हें एक्सरसाइज करने और हेल्थी डाइट लेने के फायदे को एक्सप्लेन करें। बच्चे से सड़क पर सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बात करें। उनसे ड्रग्स, शराब और स्मोकिंग के खतरों के बारे में एक्सप्लेन करें। काउंसलिंग दें। किशोरावस्था बच्चे और माता पिता दोनों के लिए एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में दोनों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रिश्ते में तनाव आने की संभावना होती है। जब माता पिता पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। टीनेजर्स बच्चे मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में टीनेजर्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार ही सही राह दिलाती है, वरना मामला बिगड़ जाता है। टीनेजर्स बच्चों को दोस्त बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ खास बॉन्ड डेवलप करना होता है। ऐसा करने से रिश्ते एक अलग मुकाम हासिल करता है। उनकी रुचि में रुचि दिखाएं। यह जरूरी नहीं है कि आपको उनके शौक के बारे में पूरी जानकारी हो, बस दिलचस्पी दिखाएं। शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, लाइक देयर हॉबीज, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस, गोल्स, और उनका समर्थन करने के लिए जितना हो सके भाग लें। With this information about parents and teenage relationship in today's Lamhe program, we come to the conclusion now. And I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. Call or message us on 0951522703 9. That's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com. That's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla. That's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: प्रबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गाँव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक

0: सार्थक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का लिखा है।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
0: बनबकेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
0: मेघालय जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओं मेघालय यानी मेघों का घर
0: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
0: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
0: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
0: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
0: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
0: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
0: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
0: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
0: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
0: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
0: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
0: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
0: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती
0: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें
0: जी।
1: तो पहली बात,
0: संकट में घबराए नहीं।
1: दूसरी बात,
0: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
0: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
0: जी। और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता

0: और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
0: जी,
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी
2: श्रम का राग सुनाती चींटी
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा दाना चुनकर लाती चींटी सचमुच कैसी कलाकार है
2: घर को खूब सजाती चींटी
1: छोटा तन पर बड़े इरादे
2: छोटा तन पर बड़े इरादे
1: नहीं कभी घबराती चींटी
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी
2: काम बड़े करके दिखलाती
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की
1: हमको यही सिखाती चींटी अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

0: पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने
1: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
2: नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
3: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
1: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
4: प्लीज
3: मेघा,
4: दिखा दो।
5: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
1: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी। चलो चलो
6: चलो चलो। गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
6: बहुत अच्छी
7: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
0: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
8: जी मैडम।
0: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
8: धन्यवाद मैडम।
0: क्या मिला पुरस्कार में?
8: जी
1: मैडम, आप ही कहते हैं इंतजार कर रही थी।
0: अच्छा,
1: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
0: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
8: लीजिए मैडम।
0: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
5: किताब मिली है।
0: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
8: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
0: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
5: सैनिकों के बारे में।
1: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
0: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
8: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
0: अच्छा।
8: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
0: वाह,
7: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
0: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
5: सैनिकों को तो बात करनी होती होगी।
8: बहादुर है हमारे सैनिक।
1: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती है। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
4: मुझे भी।
3: इसके बाद में
1: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
8: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
1: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
0: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
1: रास्ता है?
0: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
8: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
0: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
8: जी मैडम।
6: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
8: जी मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
8: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
0: क्या बात है।
1: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
8: बताती हूँ सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
1: वाह,

0: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
1: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
0: शाबाश।
1: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
2: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
1: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
3: ओ मैडम जी।
0: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
3: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
0: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
3: ठीक है जी।
0: बच्चों, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
1: जी मैडम।
0: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
4: बहुत वीरता का काम है।
2: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
5: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
6: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
7: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
0: चुप, एकदम शांत। बच्चों, ये है मेजर अशोक।
8: नमस्ते सर।
9: नमस्ते बच्चों।
0: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
1: जी मैडम।
9: भाई, आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
1: धन्यवाद सर।
8: धन्यवाद सर।
9: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
1: धन्यवाद सर।
9: हाँ, तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
1: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
9: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों, परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे, और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
9: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली, तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
8: एक हिंदुस्तान।
9: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा, और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
10: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है

0: कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है। इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
1: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
2: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हम

0: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे,
1: शाबाश जांबाजो, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं, डटे रहो। फायर फायर।
0: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे,
1: सर दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है, हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे, आप फौरन हवाई कवर भेजिए, ओवर एंड आउट।
0: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
1: सर हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं, ओवर एंड आउट।
0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
1: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे।
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
1: जवानों आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचने दे पाए, आगे बढ़ो, फायर।
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
1: बाला सिंह, लग भाई वैक्सीन भरता हूँ। Keep on firing! छोड़ना नहीं मोर्चा, कोई यहाँ से निकलेगा नहीं, हम एक-एक को मार के छोड़ेंगे। Keep on firing!
0: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भर आया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
1: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
0: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
1: नंदिनी जी,
0: जी
1: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
0: जी,
1: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
1: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
0: जी।
1: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज ते शाम दे 6 बजन वाले ने लहुन सुनो दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
5: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल

0: अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाए। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरू ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz से।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: सब रोगों की एक ही दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई।
2: लोहन सुनो कच्चे धागे फिल्म का गीत अलका याग्निक अते कुमार सानू दी आवाज़ां विच।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाओं से सुधारों पर काम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की। आज स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। अंबाला रेल मंडल ने अलग अलग रेलवे परिसरों में सफाई अभियान चलाया। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का स्वागत किया और भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने 26वें स्थापना दिवस पर अंबाला में दौड़ का आयोजन किया। दो नए प्लान भी जारी किए गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार

0: बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है। वे आज हिसार में आयोजित रबी कृषि मेले का उद्घाटन करने के बाद किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मेले को ज्ञान और संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बताया।
1: ये मेला आयोजित करने के लिए विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृषि मेले की परंपरा केवल जानकारी आदान प्रदान करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह किसानों एवं वैज्ञानिकों के बीच संवाद करने का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। यह किसानों और वैज्ञानिकों की जानकारी रबी बीज, आधुनिक कृषि तकनीक और साथियों मशीनरी की जानकारी देने का भी मंच है।
0: इस बार कृषि मेले का थीम सतत कपास उत्पादन, फसल विविधीकरण और जल संसाधन सुरक्षा रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कृषि में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने पानी की बचत पर जोर देते हुए किसानों से दलहन, तिलहन और कम पानी वाली फसलों को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सभी से स्वेच्छा से रक्तदान करने और दूसरों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन की बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे आएं। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर चंडीगढ़ में दो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। पहला शिविर सेक्टर 16 के सरकारी बहुविशेषज्ञता अस्पताल के रक्त केंद्र में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ की 13वीं और 51वीं बटालियन के सहयोग से लगाया गया। दूसरा शिविर पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यूनिट द्वारा आयोजित किया गया। सरकारी बहुविशेषज्ञता अस्पताल में 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया और नियमित रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए जीवन बचाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत पर आज अंबाला रेल मंडल द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंबाला छावनी रेलवे परिसर में करीब एक घंटे तक सफाई की। श्री विनोद भाटिया ने बताया कि अलग अलग स्टेशनों और रेलवे परिसरों में भी सफाई अभियान चलाया गया है।
2: स्वच्छता हमारे मंडल के अलग अलग स्टेशनों पे, अलग अलग परिसरों पे हम लोगों ने सफाई अभियान शुरू किया है और मेरी अपनी रेल यूजर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे रेलवे परिसर को, हमारी ट्रेन्स को आप कृपया साफ रखें, हमें सहयोग दें। मेरा यही अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर इस स्वच्छता पखवाड़ा को मनाएं और इस स्वच्छता को कंटिन्यूस बेसिस पे एक हैबिट बनाने की कोशिश करें।
0: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत गांधी जयंती के अवसर पर हरियाणा में सघन सफाई अभियान चलाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों और आम जन की भागीदारी के साथ जिला से लेकर मंडल स्तर पर चिन्हित स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता और जन भागीदारी का संदेश देंगे। पंचकुला में पार्टी की बैठक के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि आज की बैठक में कल के कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गई। हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों में कल गांधी जयंती पर सुबह 11 बजे विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सेवा संकल्प अभियान के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लोगों को इनका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा विपणन सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी का हरियाणा के जिला जींद के किसानों ने जोरदार स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी और उदारवादी सोच का प्रमाण है। एक किसान संदीप ने कहा,
3: MSP पे जो रवि की फसलों के लिए जो फैसला लिया है वो किसानों के लिए एक मील का पत्थर होगा। जो फसल पे 100 रुपए खर्च आएंगे 50% का मुनाफा किसानों को होगा, वो

0: किसानों के लिए बहुत अच्छा है। 2018 में सरकार ने MSP में यही वादा किया था कि भाई जो फसल में लागत होगी 100 रुपए खर्च होगी तो उसका 50% का फायदा दिया जाएगा। सरकार ने जो रेट बताए हैं किन किसानों के घर में खुशहाली आएगी।
1: वहीं एक किसान सत्यवान ने कहा कि इससे किसान की लागत की भरपाई होगी।
2: किसान के लिए सरकार द्वारा बढ़ाए गए रेट किसान को बहुत ज्यादा मजबूती देगी। लागत की जो बढ़ोतरी हो रही थी किसान का फायदा होगा और किसान मजबूत होगा। किसान की तरफ सरकार देख रही है। गेहूं का 25 रुपए बढ़ा है उससे भी किसान को खर्चा का फायदा होगा। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल नए सैनिक ने भी इसके लिए बहुत धन्यवाद।
1: भारत संचार निगम लिमिटेड ने आज अपने 26वें स्थापना दिवस पर अम्बाला में 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया। इस मौके पर दूर संचार मुख्य महाप्रबंधक सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्री सुरेश कुमार ने कहा कि आज 2 नए प्लान शुरू किए गए हैं। पहला 202 रुपये का टैरिफ वाउचर है जिसके साथ 10,000 रुपये तक का साइबर सुरक्षा बीमा मिलेगा। दूसरा 2499 रुपये का वार्षिक प्लान है जिसमें 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाओं से सुधारों पर काम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा राज्य सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की। आज स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। अम्बाला रेल मंडल ने अलग अलग रेलवे परिसरों में सफाई अभियान चलाया और किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का स्वागत किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: तर कुछ नहीं,
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सरकार ने जमाखोरी अते भ्रिष्टाचार नूं रोकण लई वपारियां वास्ते खंड स्टोरेज की म्याद घटा के 15 दिन की थी। पंजाब ने सितंबर 2026 दौरान GST प्राप्ति विच साल दर साल 22.11% का मजबूत वाधा दर्ज किया। SGST संग्रह 877.82 करोड़ रुपए होया, जो कि देश विच सब तो वधे। पंजाब भाजपा के साबका प्रधान अश्विनी शर्मा ने सूबा सरकार तो फिरोजपुर विच प्रधानमंत्री आवास योजना तहत मकान अलॉट करन विच कथित रिश्वत के इल्जामों की निरपक्ष जांच की मांग की थी। पंजाब च आश्रित अते अनाथ बच्चों लिए मौजूदा माली साल दौरान हुण तक करीब 218 करोड़ रुपए की माली सहायता जारी की जा चुकी है। तो भारत पाकिस्तान नूं 4-3 नाल हरा के एशियाई खेडां दे मर्दां दे हॉकी फाइनल विच पहुंच गया है। हुण खबरां विस्तार नाल। सरकार ने खंड डीलरां लई भंडार रखण की म्याद घटा के 15 दिन कर दिती है। भंडार रखण की सीमा 1,000 क्विंटल तय की थी, जो इस महीने की 15 तरीक तक लागू होगी। ए इस साल नवंबर तक लागू रहेगी। खपतकार मामले बारे मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने त्योहारां दे समय दौरान जमाखोरी नूं रोकण अते खपतकारां नूं सुचारू सप्लाई यकीनी बनाउण लई खंड भंडार रखण दे नियमां नूं सोधिया है। मंत्रालय ने कहा कि औसत परचून खंड दीआं कीमतां अगस्त तों 15% घट गईआं ने अते होर भी घटण दी उम्मीद है। मिलदी प्रक्रिया तों बाद दीआं खंड दीआं कीमतां विच भी करीब 28% दी गिरावट आई है अते पिछले 3 हफ्तिआं दौरान स्थिर रहीआं ने। सरकार ने विक्रेतावां ते परचून विक्रेतावां नूं अपील भी कीती है कि ओह मिल दी प्रक्रिया तों बाद दीआं खंड दीआं कीमतां विच भारी गिरावट दा लाभ तुरंत खपतकारां तक पहुंचाउण। पंजाब दे खजाना अते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया है कि सूबे ने सितंबर 2026 दौरान शुद्ध GST प्राप्ति विच साल दर साल 22.11% दी

0: मजबूत वादा दर्ज किया है। राज की शुद्ध GST प्राप्ति सितंबर 2025 विच 1973.12 करोड़ रुपए तो वध के सितंबर 2026 विच 2409.47 करोड़ रुपए हो गई है। ये 436.35 करोड़ रुपए का वाधा है। मालिया कारगुजारी के वेरवे देंदे हुए खजाना मंत्री ने कहा कि SGST संग्रह 738.05 करोड़ रुपए तो वध के 870.82 करोड़ रुपए हो गया, जिस नाल 19% वाधा दर्ज किया गया जो कि देश विच सब तो वध है। सितंबर 2026 तक कुल GST संग्रह 15,405.12 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की इसे म्याद दौरान 13,112.27 करोड़ रुपए सी, जो कि 17.39% के वाधे नूं दर्शाउंदा है। मंत्री ने कहा कि मालिया जुटाउण दे नाल नाल आबकारी अते कर विभाग ने सितंबर दौरान खुफिया जानकारी आधारित लागूकरण अते चोरी विरोधी कार्रवाईआं नूं तेज़ कीता, जिस विच महीने दौरान करीब 142 करोड़ रुपए के जुर्माने लाए गए। उन्होंने कहा कि इनफोर्समेंट कार्रवाईआं धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रैडिट, जाली बिलिंग, समान की गैर दस्तावेजी आवाजाई और उच्च जोखम वाले सनती ते व्यापारक लांघियां ते केंद्रित सन। पंजाब भाजपा के सबका प्रधान अश्विनी शर्मा ने सूबा सरकार तो मंग की है कि फिरोजपुर जिले के ममदोट विच प्रधानमंत्री आवास योजना तहत मकान अलॉट करन विच कथित तौर ते रिश्वत लैण दे इल्जामां दी निरपक्ष जांच करवाई जावे। रिश्वत लैके मकान अलॉट करन दे इल्जामां दे इस मामले नूं बेहद मंदभागा ते शर्मनाक करार दिंदे उन्हां कहा कि इह गरीबां दे हक ते डाका है। एक बयान विच उन्हां कहा कि 400 लोड़वंद परिवारां दी सूची विचों सिर्फ 33 मकान मंजूर होए ते इन्हां विचों वी सिर्फ 2 मकान लोड़वंदां नूं मिले, जबकि बाकी 31 मकान जमीना वाले रसूखदारां नूं दित्ते गए। श्री शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले की निरपक्ष अते उच्च पदरी जांच होनी चाहिए है। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे जनतक सेवा विच 25 साल पूरे हो रहे ने। एक अजिहा सफर है जिहड़ा जन सेवा तो देश सेवा दे मंत्र अते अटुट वचनबद्धता नाल परिभाषित हुंदा है अते ए सिलसिला जारी है। सेवा अते सुशासन दी इस सोच तो प्रेरित होके सरकार 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास अते समाजिक शक्तिकरण राही ए समर्पण लोकां दे जीवन विच बदला लिया रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष लड़ी विच असीं तुहाडे लई एक मिसाल लेके आए हां कि किवें इस दृष्टिकोण नूं मिशन लाइफ राही अमल विच लिआंदा गया है। एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ का मकसद लोगों नूं फजूल खपत घटाउण, सरोतां दी सोच समझ के वरतों करन अते चुगिरदे दी रख्या नूं अपनी रोजाना जिंदगी दा हिस्सा बनाउण लई प्रेरित करना है। पहलां जलवायु तब्दीली बारे समझौते ज्यादातर सरकारां अते सनअतां विचकार हुंदे सन। लोक अपनी रोजाना जिंदगी विच की करदे ने इस ते घट ध्यान दित्ता जांदा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 च ग्लासगो विखे 26वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु तब्दीली बारे कॉन्फ्रेंस COP26 च आलमी पद्धर ते मिशन लाइफ दा विचार पेश ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਚੁਗਿਰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 June 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਗਿਰਦਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
2: ਹਮਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਮੇ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੇ ਜਿਤਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਹੈ ਉਸੇ ਲੌਟਾਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है, जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
1: G20 नवी दिल्ली ऐलाननामे विच भी इस विचार नूं शामिल कीता गया। इस विच चुगिरदे दी रख्या नूं सिर्फ सरकारां जां सनअतां दी ही नहीं सगो हर व्यक्ति दी जिम्मेवारी बनाउण ते जोर दित्ता गया। जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं काजल।
0: कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले 9 रुतों दौरान फसलों की खरीद सफलता नाल करवाई है ते रुत दी भी सफलता नाल पूरी होएगी। उन्होंने कहा कि सरकार वल्लों किसान दी फसल दा दाणा दाणा निर्विघन खरीदया जाएगा। पत्रकारां नाल गलबात करदे हां खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामले पंजाब लालचंद कटारूचक ने दस्या कि सूबे विच अज 1 अक्तूबर तो शुरू हुए झोने की खरीद रुत तो पहला केंद्र सरकार तो नकद कर्जा सीमा CCL की मंजूरी नाल सूबा सरकार वालों खरीदे जाने वाले झोने लई किसानां नूं तुरंत निर्विघन भुगतान यकीनी बनाया जा सकेगा।

0: कृषि आय बढ़ाने में भी मदद मिली है।
1: स्कीम के तहत किसानों को 2000 रुपए की किस्त आती है, उससे वह खाद, बीज, दवाई आदि खरीद सकते हैं, जिससे उनको अपनी कृषि से आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। मैं यह बताना चाहूँगा, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2019 से अब तक पंचकुला में 20,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया है, जिस पर तकरीबन 84.05 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, तथा किसान भाई इस स्कीम का पूरा फायदा उठा रहे हैं।
0: हरियाणा के किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उनके लिए वरदान है। कैथल में किसान नरेश भारद्वाज ने योजना को लेकर अपना अनुभव साझा किया।
2: मैं एक किसान हूं, मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभार्थी हूं और पिछले लगभग कई सालों से मैं किसान निधि प्राप्त कर रहा हूं। मुझे अब तक किसान निधि की 23 किस्त प्राप्त हो चुकी है। मुझ जैसे छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि वरदान साबित हुई है। पहले हमें बीज लेने के लिए या तो दुकानदारों से उधार करनी पड़ती थी या किसी से उधार लेना पड़ता था। अब बिजाई के समय हमें किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें नई फसल उगाने के लिए बीज लेने में बड़ी आसानी होती है और हमें किन्हीं दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाना भी नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिलने वाली आर्थिक मदद हमारी कई मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है। मैं पहले एक ही ढर्रे पर खेती करता था। किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त होने के बाद मैंने अपना खेती करने का ढंग भी बदल दिया है और मैं अब विविध रूप से फसल बीजता हूं। मैं धान की खेती भी करता हूं, मैं अब सरसों की खेती भी करता हूं और दलहन पर भी अब हम ध्यान दे रहे हैं।
0: नरेश भारद्वाज ने कहा कि योजना खेती में किसान के लिए सहारा बनी हुई है।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर मेरे जैसे छोटे किसान के लिए एक सहारा बनी हुई है और वो हमें खेती में बहुत फायदा दे रही है। शुरुआत में ये रकम हमें भले ही कम लगती थी, लेकिन साल में 3 बार मिलने वाली ये रकम हमें उस वक्त मिलती है जब हमें बीज या खाद खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत होती है। तो ये 6,000 रुपए जो हमें 3 किस्तों में मिलते हैं, ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। और दूसरी बात, ये किस्त अपने आप बैंक के खाते में आ जाती है, किसी अधिकारी के चक्कर काटने नहीं पड़ते, कहीं मांगने जाना नहीं पड़ता। सिर्फ बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त आ चुकी है।
0: पंचकुला के गांव हरिपुरा के किसान मनीष राणा ने कहा कि ये योजना छोटे किसान की जरूरतों को पूरा करती है।
3: मुझे किसान सम्मान निधि के तहत 23 किस्त 2019 से 2026 तक प्राप्त हो चुकी है। इस योजना से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मैं एक छोटा जमींदार हूं, इससे मैं अपनी जरूरत के हिसाब से खाद, बीज और अन्य छोटे मोटे खर्चे जो खेतों के लिए जरूरी हैं, एक किसान के लिए जरूरी हैं, वो मैं कर सकता हूं। अभी मुझे ये राशि मुझे मेरे बैंक खाते में सीधे प्राप्त हो रही है, जिससे मुझे इसका सीधे सीधे लाभ हो रहा है और इसकी सहायता से मैं अपने जो छोटे मोटे कार्य है वो भी कर पा रहा। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और जिससे हमें लाभ मिल रहा है।
0: फरीदाबाद के किसान दिनेश सिंह ने भी योजना को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
4: मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभार्थी हूं और अब तक मुझे इसकी 23 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। एक समय था जब खेती के लिए बीज खरीदने तक के लिए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली आर्थिक मदद ने हमारी खेती की बेसिक जरूरतों को पूरा करने में काफी सहारा दिया। पहले मैं मुख्य रूप से धान की खेती करता था, लेकिन अब मैंने धान के साथ साथ सरसों की खेती भी शुरू कर दी है। इसमें खेती की विविधता आई और साल में अलग अलग समय पर आमदनी का अवसर भी बढ़ा। शुरुआत में मिलने वाली रकम भले ही कम लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी, खेती के तरीकों को जानकारी बढ़ी और अपने खेती में भी बदलाव करना शुरू किया। आज पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलते हैं। यह रकम किसान की पूरी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन बीज, खाद और खेती की दूसरी जरूरतों के समय मिलने वाला सीधा आर्थिक सहारा जरूर है।
0: दिनेश सिंह ने कहा कि योजना से मिलने वाली किश्त उसके लिए खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाने में सहायक हुई है।
4: मेरे लिए पीएम किसान सिर्फ खाते में आने वाली 2,000 रुपए की किस्त नहीं है, मेरे लिए यह उस बदलाव का हिस्सा है जिसमें किसान छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खेती में निवेश करने की कोशिश कर रहा है। दान में सरसों का यह सफर मेरे लिए सिर्फ फसल बदलने का नहीं बल्कि खेती को बेहतर बनाने की सोच का सफर है। मैं एक लाभार्थी किसान हूँ और मेरी कहानी

0: आदि है कि सहायता, जागरूकता और मेहनत साथ हो तो किसान अपनी खेती को नई दिशा दे सकता है। धन्यवाद।
1: हिसार जिले के गंगवा गांव के किसान सुभाष चंद्र ने कहा कि इस तरह की योजनाएं किसानों को राहत देती है।
2: सरकार द्वारा किसान हित में अनेक योजनाएं चलाई गई है। उनमें से किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए किसानों के डायरेक्ट खाते में दिए जाते हैं। इससे समय समय पर अपने उर्वरक, बीज व दवाइयां खरीदकर लाभ प्राप्त करता हूँ। मैं सरकार से अपील भी करूंगा, इस प्रकार की योजनाएं निरंतर किसान हित में लागू करते रहें।
1: भिवानी में लोहारी जाटू गांव के किसान पुरुषोत्तम ने कहा कि ये योजना का पैसा सही समय पर मिलने से खेती में बहुत लाभ होता है।
3: मैं करीब करीब 6-7 एकड़ भूमि में खेती करता हूं। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त मिलती है 2,000 रुपये। वह किस्त बहुत ही अच्छी फायदेमंद साबित हो रही है हमारे लिए, क्योंकि जिस वक्त किस्त का पैसे जारी होते हैं उस वक्त हमें रबी या खरीफ फसल की बिजाई के लिए खाद, बीज, दवाई आदि खरीदनी पड़ती है, और इन पैसों से हम बीज, खाद, दवाई आदि खरीद के अपने खेत में बेहतरीन तरीके से बिजाई कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, और जिस समय सम्मान निधि की किस पैसा जारी होता है वह भी सही समय है, क्योंकि जैसे अब किस्त जारी हुई है, अब हमें रबी फसल की बिजाई करनी है, रबी फसल की बिजाई के लिए सरसों के लिए खाद, बीज आदि की हमने खरीद करनी होगी, तो उसमें सहायक साबित होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के हम ताउम्र आभारी रहेंगे, और सरकार की एक बेहतरीन योजना है, इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
1: पंचकुला के गांव हरिपुरा के एक और किसान धर्मपाल ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा।
4: प्रधानमंत्री व हरियाणा सरकार ने जो पीएम किसान योजना निधि योजना चला रखी है किसानों के लिए, वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे किसानों को फसल के समय बीज की दवाई खाद लेने में बहुत मदद होती है। आगे भी यह योजना इसी प्रकार चलती रहे, मैं प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक सोनिया।
5: हुण तुसी सुन रहे सी समाचार दर्शन। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। लो हुण सुनो पंजाबी गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯੋਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: स्वच्छता ही सेवा है।
5: कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
7: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
8: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
7: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
8: HIV
7: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
9: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
10: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
11: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले फौजी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का पहला गीत है हरिहरन, विनोद राठौड़ और सोनू निगम की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है चाइना गेट।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: झुक गया आसमां, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है शिकार।

0: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, हर लम्हा हर पल आपके साथ।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड।

0: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्स से। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रीख्यावां लैण वालियां वख-वख संस्थावां नूं सुधारां ते कम करन दी अपील कीती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी ने कहा कि राज सरकार बीज तो लैके मंडी तक किसानां दे नाल खड़ी है। अज राष्ट्रीय स्वै इच्छित खूनदान दिवस ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी ने सारयां नूं स्वै इच्छा नाल खूनदान करन दी अपील कीती। आज चंडीगढ़ के सैक्टर 16 के सरकारी मल्टी स्पैशलिटी हस्पताल अते पंजाब अते हरियाणा सिविल सकत्रेत विखे खूनदान कैंप लगाए गए। अंबाला रेलवे डिवीजन ने आज स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत करदिआं वख-वख रेलवे स्टेशनां ते सफाई मुहिम चलाई। किसानां ने केंद्र सरकार द्वारा हाड़ी दीआं फसलां लई घट्टो घट समर्थन मुल विच वाधे दा स्वागत किया। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने 26वें स्थापना दिवस ते अंबाला विच एक दौड़ दा आयोजन किया ते नवीआं योजनावां भी लॉन्च कीतीआं। कल गांधी जयंती ते हरियाणा दीआं सारीआं ग्राम पंचायतां विच विशेष ग्राम सभावां दा आयोजन किया जाएगा जिस विच पिंड वासियों नूं सफाई दी सहुं चुकाई जाएगी। भाजपा की सूबा प्रधान डॉ अर्चना गुप्ता ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत गांधी जयंती के मौके पर हरियाणा विच एक व्यापक सफाई मुहिम चलाई जाएगी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान डॉ अजय सिंह चौटाला कल गांधी जयंती के मौके पर चौटाला तो चंडीगढ़ राज पदरी जन जागरूकता मुहिम की शुरुआत करेंगे। मुख प्रादेशिक खबरां खत्म हुई। सुनो कुछ पंजाबी गीत। शुरुआत करते हैं गुरदास मान दे गाए इस गीत के नाल।

0: श्रोताओं, आज के हवा महल में आपको सुनवाते हैं सोमनाथ नागर की लिखी झलकी अंगारे। निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत।
1: गोपी, अरे ओ गोपी, अरे कहाँ मर गया?
2: आया साहब।
1: जी साहब। साहब के बच्चे कहाँ था, क्या कर रहा था?
2: कुछ नहीं, जरा ब्रेकफास्ट कर रहा था जी।
1: क्या कहा, ब्रेकफास्ट?
2: जी नहीं, जी हाँ, मेरा मतलब है कि आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था।
1: अच्छा अच्छा, फौरन जाओ और मेरी साइकिल में हवा भरवाला।
2: ना साहब, इस समय मैं माफी चाहता हूँ, अगर मैं इस वक्त आपकी साइकिल में हवा भरवाने चला गया तो मेरी हवा खराब हो जाएगी, फौरन ही माजी मेरा पोस्टमार्टम कर देंगी।
1: अरे पोस्टमार्टम नहीं बल्कि कोर्ट मार्शल।
2: कुछ भी हो वही हो जाएगा।
1: अरे तू माजी से इतना डरता क्यों?
2: अजी डरू नहीं तो क्या, नो हाथ ऊंचा कूदू। साहब आप तो ऑफिस चले जाते, लेकिन बाद में यहाँ जो ऑफिस लगता है वो बड़ा ही भयंकर होता है। जहाँ आप इस समय चारों तरफ शांति ही शांति देख रहे हैं, वह देखते देखते कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है।
1: अच्छा
2: अहमत, माजी आ गई, मैं चला।
3: अरे क्यों रे, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है?
2: कुछ नहीं माजी,
3: कुछ नहीं, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चल। बेटा राजेश
1: जी,
3: ऑफिस से आते समय पंसारी का हिसाब करते आना, उनका मुनीम आया था।
1: अच्छा माँ।
3: अरे गोपी, अरे ओ गोपी, मरा सुनकर भी तो नहीं सुनता, गूंगा बन जाता है ये।
1: ओफो, आज फिर ऑफिस को देर हो गई। अजी मैंने कहा श्रीमती जी, अगर खाना तैयार नहीं है तो खाली चाय ही पिला दो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है।
4: जी अभी लाती हूँ।
1: राजेश, अरे कौन, विमल?
5: हाँ आओ यार। अम्मा यार, 10:30 बज चुके हैं, क्या ऑफिस नहीं चलना है आज?
1: यार घर के कलेश से फुर्सत मिले तभी तो ऑफिस जाऊँ।
5: प्यारे ये रोग तो सभी के साथ लगा हुआ है, जब शादी की है तो निभाना ही पड़ेगा। उस वक्त तो हम लोग सोचते नहीं, जब घोड़े पर बैठकर बैंड बाजे के साथ धूमधाम से जुलूस निकलता।
1: मजाक छोड़ यार।
5: यार मैं तो दिल को तसल्ली देने के लिए एक बात कहता हूँ, हम सुखी तो जहान सुखी, हम दुखी तो जहान दुखी।
1: यार विमल, जहाँ तो ना घर में चैन है और ना ऑफिस में। माँ जी का स्वभाव चिड़चिड़ा इसलिए हो गया है कि मैंने लव मैरिज की है। मेरी हालत तो ये है कि ना बीवी को छोड़ सकता हूँ और ना ही माँ से अलग रह सकता हूँ।
5: भाई ये तेरे ही साथ नहीं है बल्कि घर घर यही झगड़े हैं। तेरी तो लव मैरिज है लेकिन मेरी तो अरेंज मैरिज है, फिर भी मेरी अम्मा से बहू की खटपट रहती है। दरअसल हमारी माँ ने देखा अपनी सास का जमाना और ये उसमें डली हुई है। इन्हें क्या पता आजकल की बहुओं का दिमाग कैसा है। मेरे घर में सुबह से शाम तक सर फटावल होती है, अगर तू 2 घंटे बैठ कर देखे तो अपने बाल लोच ले। पर भाई मुझे तो आदत पड़ गई है।
1: सुन विमल, तूने कोई हल निकाला?
5: यार इसका हल तो रास्ते में निकालेंगे, फिलहाल तो ऑफिस जल्दी पहुंचने की सोचो, वरना भैया अपनी नौकरी पर हल चल जाएगा।
0: ये लीजिए खाने का डिब्बा, चाय का पानी मैंने रख दिया है।
1: वाह वाह, देखा विमल, देवी जी ने अभी तो चाय का पानी ही रखा है। मैंने कहा श्रीमती जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपने ससुराल नहीं, अब चाय तुम पियो, मुझे अपने बॉस की डांट पीनी है। चलो विमल
5: चलो। अच्छा जी नमस्ते।
4: अजी सुनिए तो, सुनिए। क्यों री, अब यहाँ खड़ी खड़ी सावन के गीत गाएगी क्या? सुबह सुबह भेज दिया मेरे लड़के को भूखा, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, हो गया तेरा दिल राजी? अरे पता नहीं तू इस घर में क्या करके

0: छोड़ेगी।
1: माँ जी,
0: भगवान जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मैंने अपने गौकरण जैसे लड़के के पल्ले तू जैसी को बांध दिया है। कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। अरे ये पानी काय को खोल रहा है?
1: उनके लिए चाय का पानी रखा था।
0: अरे फूटे करम, वो तो गया। इस पानी की मुझे चाय बना दे। हे भगवान, इस घर में बेकार की ही आग सुलग रही है।
1: माँ जी, सारे दिन काम करती रहती
0: हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिन रात मेरी छाती पर दलिया जो दलती रहती है। बड़ा मेरा कलेजा ठंडा कर रही है ना तू। अरे अरे, तूने ये हाथ में पट्टी काय को बांधी है?
1: तरकारी काटते समय उंगली में चाकू लग गया था।
0: वारी मेरी हूर की परी, अरे हाथ में चाकू ही तो लग गया था, कोई तलवार तो नहीं लग गई थी। मेरी बात मान
1: जी,
0: अपने हाथ में पलस्तर चढ़ा ले और फिर आस पड़ोस में ढिंडोरा पीटती फिर कि हाय मेरी सास ने मुझे मार डाला, हाय मेरी सास ने मुझे मार डाला।
1: माँ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं?
0: तो क्या शोर मैं मचा रही हूँ? अरे वारी तेरी चाले, कुछ तो शर्म कर, क्यों सास को बदनाम करती है? अरे मुझ जैसी सास तो तुझे सात जन्म में भी मिलनी मुश्किल है। कोई दूसरी सास होती ना तो दो ही दिनों में चुटिया पकड़ कर दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती। अरे गोपी, अरे ओ गोपी, तू कहाँ मर गया जाकर?
2: भगवता बहन, अरे ओ भगवता बहन,
0: अरे आओ कलाकंद की अम्मा, आ जाओ।
2: अरे क्या कर रही हो बहन?
0: अरे बहना क्या कर रही हूँ, अपने कर्मों को रो रही हूँ। इस काम चोर बहू ने तो दुखी कर रखा है मुझे।
2: अब क्या कहा जाए भगवता बहन, आजकल की बहुओं को काम धंधा तो कुछ आवे जावे है नहीं।
0: अरे कलाकंद की अम्मा, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे इसे घर में आए साल भर हो गया है पर काम काज करने की खाक भर भी अक्कल नहीं इसे।
2: अरे तो बेचारी को माँ ने सिखाया हो तभी ना। भगोता बहन, गृहस्थी चलाना कोई खाला जी का घर नहीं है। इसकी उम्र में तो मैं 7 बच्चों की माँ थी, 7 बच्चे पालना कोई मजाक थोड़ी है।
0: अरे समझाना भी तो बुरा लगे है, ज्यादा कहो तो खसम की कमाई की धौंस देंगी या फिर टसुए बहा देंगी।
2: भगोता बहन, मेरी बहू सबके सामने तो बड़ी आज्ञाकारी बनती है मगर मैं जानू हूँ बाद में मनी मन मुझे कोसती रहवे।
0: अरे कलाकंद की अम्मा, इन बहुओं के कोसने से कई सासे भी मरा करे हैं।
2: अरे गोपी, ओ गोपी,
3: आया।
2: मुझे बाजार से काली मिर्च और फल दिला दे।
3: आए, लाल मिर्च को काली मिर्च की क्या जरूरत आन पड़ी?
2: आए, क्या कह रहा है तू?
3: कुछ नहीं मौसी, कुछ नहीं, लाओ पैसे। लाल मिर्च?
2: अरे लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च लानी है, काली मिर्च। जल्दी जा और पैसे गिन कर लाइयो वापस।
3: प्यारी लाल मिर्च।
0: अरे कलाकंद की अम्मा, ये 10 जमात पढ़ी लिखी क्या आ गई है, मेरी तो आफत आ गई है। अब बता क्या करूं इस बहू का?
1: माँ जी, बुखार से मेरा सर फटा जा रहा है, आज आप खाना बना
2: लीजिए। लोराजे की माँ लग गए पर। अरे अभी क्या है, अभी तो उंगली से पहुँचा पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मालकिन से नौकरानी बनाएगी ये।
1: माँ जी, आप दूसरों के सिखाए में आकर क्यों?
2: हाय हाय, ये तो मुझे ही कोसने लगी।
3: मौसी बात सुनिए, खुद अपने घर में आग लगाकर क्यों दूसरों के घर को भी उसकी लपेट में ले रही हो? बहू घर की लक्ष्मी होती है।
2: देखा भगवता बहन, आज के नौकरों की हालत देखो तुम।
3: मौसी, जब तुम अपने सगे बहू बेटे की मीत नहीं हुई तो फिर पड़ोसन की सगी क्यों होगी? माँ जी, बहू पराया धन होती है, अपने माँ बाप को छोड़कर वो आपकी शरण में आई है।
0: तू इसी वक्त निकल जा मेरे घर से बाहर, मैं कहती हूँ निकल जा। मेरी रोटियों पे पलने वाला मेरे ही सामने बोलता है, निकल निकल यहाँ से।
3: ये धरी है तुम्हारी नौकरी, लानत है इसी नौकरी पर, जहाँ घर की बहू बेटियों को तोल तोल कर रोटियां दी जाती हो। माँ जी, किसी की आ लेनी अच्छी नहीं होती। अच्छा नमस्ते, कोई गलती हो गई तो माफ करना।
0: कलाकंद की अम्मा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर ये बहू।
3: माँ,
0: अरे राजेश बेटा, तू तू कब आया, तू यहाँ कब से खड़ा है? मेरा मतलब है तू आज ऑफिस नहीं गया?
4: दफ्तर की चाबियां भूल गया था, वही लेने आया था। अरे आंटी जी, आप नमस्ते।
2: जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे।
0: राजेश, आज इस बात का फैसला होगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये बहू।
4: ओ, आज फिर क्या हुआ माँ?
2: बेटा, माँ बाप इसलिए तो पाल पोस कर बड़ा नहीं करते कि जवानी में आके तुम लोग अपनी बहुओं के इशारे पे नाचा करो और बूढ़े माँ बाप की दुर्गति कराओ।
4: हे भगवान, मैं क्या करूँ, इस रोज रोज के कलेश से तो मैं खुद दुखी हो गया हूँ। लता
1: जी,
4: अपना सामान बांधो और इसी समय अपने घर चली जाओ।
1: मेरा घर यही है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
4: मैं कहता हूँ मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
1: हाँ, मार डालो मुझे, मुझे मर ही जाना चाहिए।
0: अरे अरे, बहू का हाथ तो छोड़। अरे इसे कहाँ खींच ले जा रहा
4: है? मैं कहता हूँ तुम बीच में मत छोड़ो। चलो।
0: अरे राजेश।

0: अरे
1: क्या कर रही हो राजे की अम्मा, इससे अच्छा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा।
2: अरे नहीं नहीं, अगर मैंने बहू को नहीं बचाया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, पाप चढ़ जाएगा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। गोपी ने ठीक ही तो कहा था कि किसी की आ लेना ठीक नहीं है बहन, ठीक नहीं है ये बात।
3: माँ माँ, तुम यहाँ हो, जल्दी घर चलो, लीला ने जहर खा लिया है।
1: जहर खा लिया?
3: वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई माँ।
2: जहर खा लिया? अरे अब क्या होगा, लल्लू की बहू ने जहर खाया था तो पुलिस उसके सभी घर वालों को पकड़ कर ले गई थी, अब हमारा क्या होगा। आए मेरी बहू मर गई, अरे मेरी जान सी बहू, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। अरे जहर खाने से पहले मुझसे तो पूछ लेती।
3: रो मत महा, रो मत, कम से कम कलेश की जड़ तो खत्म हुई।
2: अरे सारी जड़ की कलेश तो मैं ही थी रे, वो बेचारी तो बेमौत मारी गई। अरे उसकी जगह मुझे मौत क्यों ना आ गई रे। अरे अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी रे।
3: क्या हुआ थी? क्या हुआ?
2: अरे मेरी लीला इस दुनिया में नहीं रही।
1: हाय हाय, चलो मेरी बहू तो बाल बाल मरने से बची। क्यों रे, तूने मेरी बहू को कितनी बेदर्दी से मारा है, खबरदार जो तूने इसके हाथ भी लगाया तो। आ बेटी आ, मैं तुझे गले से लगा लूं।
2: अरे भगोता, तूने मेरी बहू को तो मरवा दिया और अब अपनी बहू को छाती से लगा रही है मेरे सामने।
3: अरे मरने से पहले वह चिट्ठी ले गई है, अपनी ससुराल में मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं था।
2: मेरी
3: सास मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार देती थी, मगर मैं ही इस काबिल नहीं थी कि उनकी सेवा कर सकूं। मैं अपनी इच्छा से ये संसार छोड़ रही हूँ, बदनसीब लीला।
2: अरे मेरी लीला, तेरे बगैर तो मेरा घर ही सूना हो गया। अरे मरते मरते भी तुम मेरी तारीफ कर गई रिया।
1: देख कुंती बहन, अगर मैं भी तेरी बात मान लेती तो आज मैं भी अपनी बहू से हाथ धो बैठती।
2: अरे भगोता, तेरे कहने में आके तो मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया।
1: झूठ मत बोल कलाकंद की अम्मा, तू ही तो कहती थी कि मैं बिमल से उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर लीला की मरम्मत करवाया करती हूँ।
2: तेरा कलेजा तो ठंडा हो गया, तेरी बहू तो जिंदा है, अब मेरी लीला कहाँ से आएगी ये बता।
4: अरे ओ कुंती बौसी, अरे रो मत, देख तेरी बहू को जमराज ने वापिस भेज दिया है। हाँ, मगर इस शर्त पर कि अब तुम इसे दुख नहीं दोगी। हाँ
2: तो क्या वो मरी नहीं है?
4: कहो तो अब कुएं में धक्का दे आऊं।
2: अरे तो क्या उसने जहर नहीं खाया था?
5: माता जी, आपकी बहू होकर क्या वो जहर खा सकती थी?
4: बौसी, ये सब तो सिनेमा था तुम्हें दिखाने के लिए।
2: क्या कहा, ये सब दिखावा था?
4: हाँ, कहो तो अब राजेश बाबू की भी पोल खोल दूं।
3: गोपी
4: देखो, राजेश बाबू मुझे घूंसा दिखा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बतलाऊंगा कि इन्होंने बहू जी को मारा नहीं था, बल्कि ये दोनों ही कमरे का फाटक बंद करके आपको नाटक दिखा रहे हैं।
1: नाटक?
4: हाँ, आज ये लोग ऑफिस थोड़े गए थे, बल्कि छत पर बैठ कर सास बहू का तमाशा देख रहे थे।
1: अरे कलाकंद की अम्मा।
2: अरे हाँ बहन भगोता,
1: ये तो हमारे भी गुरु निकले।
2: गोपी पानी पानी पानी।
3: गोपी गोपी भाग के पानी ला जल्दी जा।
4: अरे अजी बाबूजी, ये मौसी यूं ही आसानी से बेहोश होने वाली नहीं है, ये भी नाटक कर रही है, नाटक।
2: अरे क्या कह रहे, नाटक? इधर तो आ, तुझे बताऊं।
4: अच्छा बाबूजी, सबको जा रहा हूं।
6: अरे कहां जा रहा गोपी जी? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरी माँ ने बुलाया है, वो अगले महीने मेरी शादी कर रही है।
3: अच्छा
6: माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरे घर भी छम छम करती बहू आए और मैं दूधो नहाऊं और पूतो पलूं।
5: अरे भाई मिठाई तो खिला जा,
4: पहले जन्म पत्री तो मिलवा लाओ।
6: अरे किससे, लड़की से?
4: लड़की से तो बाबूजी 27 ग्रहों में जन्म पत्री मिल गई, असली जन्म पत्री तो मैं अपनी बहू की अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ, ताकि बाद में मेरे घर भी इस तरह सास बहू का नाटक ना हो।
7: आज के हवा महल में आपने सुनी सोमनाथ नागर की लिखी झलकी अंगारे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ

विद भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सोनू निगम और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में। गीतकार संगीतकार है नितिन रायकवार और फिल्म का नाम है स्टाइल।
1: समझ में नहीं आ रहा, तेरे घर का पता है यार, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया।
2: तो कटिंग आना है।
1: अरे मैं क्या बोल,

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान और उदित नारायण को अगले गीत में। इस गीत को लिखा है अब्बास टायर वाला ने, संगीत है विशाल का और फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप

0: जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है मोक्ष।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है लज्जा।

चित्रलोक अब समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र

0: में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
2: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
4: We are very, very proud of the bravery and the courage.
5: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
4: We are very, very grateful and we are really, really extremely proud of it.
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को

0: अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा

0: 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
1: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
2: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
3: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है लव मैरिज।

0: पे चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झूम के चले तो दिल पे

0: वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी।
1: हुआ हुआ सर कि हमने नजर झुका दी।
0: अरे होंगी।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कला

0: आकार इला छपन छोरे मतवारी तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे छपन छोरे मतवारी। तारीख याद रखिएगा 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आज और कल।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: जो न कह सका।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।
0: तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत,
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। जब तुम्हें मैंने पहली दफा देखा था, मुस्कान ने तुम्हारी मेरे दिल को जीता था। जाने तुम्हारी काली आंखों का जादू था या गोरे गालों की हंसी, जाने अनजाने ही सही मैं तुम्हारे प्यार के जाल में

समंदर के किनारे अकेले बैठा करते थे। न जाने तुम किसका इंतजार किया करते थे। नसीब में जब हीरा लिखा हो तो सोने के खोने का गम मत करना, और जब हीरा मिल जाए तो सोने से तुलना करके हीरे का मोल कम ना करना।

अंतराल के बाद एक बार फिर छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को तन्हा पाती हूँ। हर शाम तुमसे मिलने की चाहत में दर पर अखियां बिछाती हूँ। तुम्हें आता देख खुशी से बावरी हो जाती हूँ, और जब तुम जाते हो तो बिछड़ने के ख्यालों से बेचैन हो जाती हूँ।

0: जाएंगे।
1: भरे बाजार में जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो अच्छा लगता है, जब किसी छोटे बच्चे की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो अच्छा लगता है, मेरी किसी नादानी पर जब तुम प्यार से डांटते हो अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ जीवन का हर ख्वाब बिल्कुल सच्चा लगता है।

मेरी खुशी का जरिया हो तुम, मेरे सुकून का दरिया हो तुम, दुआओं में जिसे मांगा था वो हकीकत हो तुम। अब हर जन्म में मेरे मेरे और सिर्फ मेरे हो तुम।

0: आज के छाया गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विकोटर्मा।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीद

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य

0: इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स

निवेश या किसी जरूरत के लिए पैसे। SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: ਮਦਨਮਤੀ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ। 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता

0: निकाले जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 24 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।